रहाउ। हसी मिट्टी सोजी होए, ताका किया माने सोए, करनी ते कर चको टाल, ऐथे उथे निभही नाल, आपे नदर करे जा सोए, गुरमुख विरला बूझे कोए, तित घट दीवा निश्चल होए, पानी मरे ना बुझाया जाए, ऐसा दीवा नीर तराए, डोले वाओ ना वड्डा होए, जापै ज्यो संघा सुन लोए, खतरी ब्राह्मण सूद के वैस, निरत ना पाइया गणी संस, ऐसा दीवा बाले कोए, नानक सो पारंगत होए, राम कली महला पहला, तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ, साच भेट बैसन कौ थाऊ, सत संतोख होए अरदास, तां सुन सद बहाले पास, नानक बिरथा कोई ना होए, ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ, प्राप्त पोता कर्म पसाउ, तू देव है मंगत जन चाउ, भांडे पाउ पवे तित आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किश किया सो किश करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक तकार कह मंगत जन, मांगत मान ना पाया, सहकियां गल्ला दरकियां बातां, तैं तां कहन कहाया, राम कली महला पहला, सागर मह बूंद, बूंद मह सागर, कमन बुझे बिद जाने, उत पुज चलते आप कर कीने, आपे तत पछाने, ऐसा ज्ञान बिचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ, दिन मह रैन रैन मह दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकी गतमित अवर न जाने, गुरबिन समझ न होई, पुरख मह नार नार मह पुरखा, बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन मह जोत जोत मह मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला, जा हर प्रभ कृपा तारी, ता हो मैं विचो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी बिचारी, सो हर जन हर प्रभ पावे, अहनस भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाउ, तुन वाजे अनहद घोरा, मन मानिया हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी, तह तीर्थ वर्त तप सारी, गुर मिलिया हर निस्तारी, जह आप गया पौ भागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया, राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई, जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीख्या पाए शब्द तृप्तासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी, राम कला निबह पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार, लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द बिचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा घर पहला, सतजुग सच कह सब कोई, घर घर भगत गुरमुख होई।
सतयुग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुर बिन नाम ना पावै कोई रहाउ, त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वरत्या हर जानन दूर, गुरमुख

जान है दोई, द्वापर धर्म दोए पैर रखाई, गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाई। कलयुग धर्म कला एक रहाई, एक पैर चले माया मोह वधाई। माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटै नाम उधार। सब जुग मह साचा एको सोई, सब मह सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाने कोई। सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड्याई होई। राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे वड भाग हुए वड भागी,

हृदय प्रगास हुए लिव लागै, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत काड काड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिण उलै लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जन नीके, भागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है से वड भागी, हृदय मन

सतगुर सरन परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाई है, एक अपने सवाए आए बह गुरे आगे, जो बगल समाध लगाई है, बगला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाई है, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराई है, राम कली महला चौथा, सतगुर दया करहो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लग है गुर चरनी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर ना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ, मेरे एक खिन प्राण ना रह बिन प्रीतम, बिन देखे मरह मेरी माया, तन तन वद भाग गुर सरणी आई, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपों जो पाया, नाम हीन फिर है सेन कटे, तिन कस कस नक वढाया, मोह को जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया, राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरै दिया, हर अमृत नाम सुमारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारे रहाओ, कोट कोट ते तीस त्याव है, ताका अंत ना पावह पारे, हृदय काम कामनी मांग है, हृद मांग है हाथ पसारी, हर जासु जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारी, जे वड भाग होवे ता जपिया, हर पहो जल पारी उतारी, हर जन निकट निकट हर जन है, हर राख है कंठ जन तारी, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारक हर प्रित पारी, राग राम कली महला पंजवां घर पहला।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाऊ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निद पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

हे बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचर्ज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाओ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन

पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

जिहवा तोने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आणी घुंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पंच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा।

बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवां ओ अंकार एक धुन एकै एकै राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नरहर जान हदूरे हुंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह भिसत कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा, एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई, रोवन हार पे उठ सदहाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

यो जपया नाथ दिन रह नाई, हुण पाया गुरु गोसाई। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन ना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किनै विरलै दीठा। रहाओ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये निकाम। तन मन सी तल अग्न निवारी, अनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया। फूल कुवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो ना

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रै गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूर्ण हर नाए नानक तिसकी।

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासै, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ता छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान, संतोख आया।

जिस हृदय वसाई, नानक ते जने उत्तम पाई, राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई, तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उदार, रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान, जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे।

सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु न लह, इस त्याग सतसंगत करै, वड भागी नानक ओह तरै। राम कली महला पंजवां, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाल है संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये ना उतरे मैल, हम मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा

दुख अंधेरा मनते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सो है।

का पुता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवे, अंत नहीं हर पारा वार रहाउ, कीर्तन निर्मोल गहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी,

दोष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिसे आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास राम कली महला पंजवां मेहमाना जानह बेद ब्रह्मे नहीं जानह भेद अवतार ना

जाऊं। संकरा नहीं जान पेव खोज तहारे देव, देवियां नहीं जान मरम सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केल आप बिछोड़ आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकी गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपिया गुरु।

निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दलाब दे सवार जाहि ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

किसका सब कोए, किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो, बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत।

सुनीजै अपने सेवक को दर्शन दीजै नानक जापी जप जाप सब ते ऊच जाका प्रताप राम कले महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा होवै पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन मन तन हर ओही त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखन हार निदान सर्व की रेण हवीजै आप मटाए मलीजै आनंदेन त्याय नाम सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माहे अराध।

अब सुरी सत पाई करनहार प्रवेहर देव उठा हाथी मछली का जाला टूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊंचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव किरत घणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवा पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिघियाड़ी लई निवार तीन अवर्त की चूकी घेर साध संग चूके पै फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप

साध संग दुख जाए रहाओ। जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल बिकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस त्यागे ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विभूता, गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाणी छोड़ नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, कृष्ण ना बूझे बहुत हया, असाध

बिन से अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहा गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावहु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरादो साचा सोए जा की शरण सदा सुख होए।

निस्बा सुर मह निमख एक उर धार है जम को त्रास मिट नानक तेह अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औध घट निस्बा।

बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझै कौन कुमत उरझाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार, हुए परवाना करै तिंगाना। कल लखन विचार रहाउ, कितै देश न आया सुनिए। तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही। महल उसार न बैठा, जे को सत करे सो शीपै। तप कर तप न होई, जे को नाउ लहे बदनाम। कल के लखन एई, जिस सकदारी तिसह खुआरी। चाकर के हे डरना, जा सिकदारै पवै जंजीरी। ता चाकर हथों मरना, आख गुणा कल आई है। तिहो जुग केरा रहया तपावस, जे गुण देहे ता पाईऐ रहाओ। कल कलवाली सरा नबेड़ी, काजी कृष्णा हुआ। बाणी ब्रह्मा बेद अथर्वण, करनी कीरत लहया। पत विण पूजा सत विण संयम, जत विण काहे जनेऊ। नावो हो धोवो तो तिलक चढ़ावो हो, सोच विण सोच ना होई। कल परवान कते बखराण, पोथी पंडित रहे पुराण। नानक नाओ भया रहमान, कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले वडियाई, एदू उपर कर्म नहीं। जे घर हुंदै मंगण जाइए, फिर ओ लामा मिले तही। राम कली महला पहला, जग प्रबोध है मड़ी बंधावै है।

का दुख भागे, घर घर मांगत लाज ना लागे रहाऊ। गावह गीत ना चीनह आप, ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। भस्म चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जम डंड। फूटै खापर भीख न पाए, बंधन बांधिया आवे जाए। बिंद न रख है जति कहावे, माई मांगत त्रै लभावे। निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता, जग सूता मारे आवै जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजै दिन राती,

जह सैला बिन हर राति मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचारे आप डुबे क्यों पितरा तारे कट कट ब्रह्म चीने जन कोए सतगुर मिले तां सोजी होए गणत गणिये सहसा दुख जीए गुर की सरन पवे सुख थीए कार्य अपराध सरन हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरन ना आईए ब्रह्म ना पाईए परम पलाईए जन्म मर आईए जमदर बहंत हो मरे बिकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहावे है दुखदा राते महल ना पावे है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख विर

दूंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभ की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर

साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरण लागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाउ, हौ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द न

भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यो हेत वधाई की नाम वसार है परम गया रहाउ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागै नाम बसारियो आवत जावत जन्म गया जां जम धाई केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राखै सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पांच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

पाखांडे औदू गुरमुख शब्द बीचारी गुरमुख जोग कमावे औदू जात सत शब्द बीचारी शब्द मरे मन मारे औदू जोग जुगत बीचारी माया मोह भवजल है अवदू शब्द तरै कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदू बाणी भगत बीचारी एहु मन माया मोहया औदू निकसै शब्द बीचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

भूत लाए जोगी ता तीन भवन जन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजै हास्यो रह लिव लाए रहाओ सत संतोख पत कर चोरी जोगी अमृत नाम भुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंही सुरत बजाई मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मह मंगन चढ़ जोगी ता नाम पल्लै पाई इत किंगरी ध्यान ना लागै जोगी ना सच पल्लै पाए इत किंगरी शांत ना आवै जोगी अभमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवै ता तंती वाजै इन

जोग जुगत एव पाए नदरियावंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग न होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रूग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

ए सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुर सलाही सदा अपना

आई। राम कली महला तीजा, हर की पूजा दिलंब है संतोह, कहना कछु ना जाई। संतोह गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतोह, क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होए, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोक संतोह, मनमुख थाई ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतोह, एह पूजा थाई पाई। पित पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। बिन नावे होर पूज ना होवी, परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतोह, राम नाम लिव लाई। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करह पर विद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख हो ऐसो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई। अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई। जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई। एह मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संगत मेल।

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करहै फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करहै दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावां शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सलाही बिचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीचै जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुर ते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किस करना सू कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई। आपे मारज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा करत पाप।

कर मारी गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवां काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साद काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याय काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाई।

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब कम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

ज्ञान अंधेर वंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो, साच शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका बहुत

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बने।

विचारिया। एक भरम पूले फिर दह देश, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे

तू सदा सच संभाली एहो कतम तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले ना कीचै।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित।

सहज उपजे एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहरो निर्मल, बाहरो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

जन्म जूए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए। अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सत

मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे।

प्यास न जाय, प्यास न जाय हूत कितै, जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिलै जिसे आई, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जां हर वसै मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, ता की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नव निध, तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहिला, साचा कर गावहु, गावो ता सोहिला कर साचै, जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बजावे, एहो सच सबना का खसम है।

संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु प्रतख हुंदै बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नाही सूजै
हर साजन सब कै निकट खड़ा, गोविंदा मेरे गोविंदा, प्राण अधारा मेरे गोविंदा, किरपाला मेरे किरपाला, दान दतारा मेरे किरपाला, दान दतारा अपर अपारा, कट कट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया, जिसनो राखै सो सच पाखै, गुर का शब्द बीचारा, कहो नानक जो प्रभ

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगाणी सारंग पाणे जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तख्त निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई सब किश पाई मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणिये कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखाने जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी माने बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझ पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै रैन दिनस अरादिय जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है सादी है पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे भवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच्छ पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधिया, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो, तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरिया, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल कूर रहया, एक निमख मनो ना विसरै। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै। कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे, नारायण दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यों रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तां कै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। संत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी। मन चिंदियाड़ा फल पावो, राम कली महला पंजवा। रुती सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर। आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुती महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन, जिन्नी एक मन त्याया।
सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सात उद्भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत शंत, रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो, कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमुल्या, वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूर्ण आस जियो, बिनवंत नानक सरण तेरी, मिति जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया, नानक कर्म है लेख, जो पाणे से मेलिया, विछोड़े पी आप, नानक प्रभ शरनागति, जा का वड प्रताप। संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी, जेठ अखाड़ काम जियो, प्रेम बशोह दहागनी, दृष्ट ना करी राम जियो, नह दृष्ट आवै मरत हावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया, कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानक ओट तेरी, राख पूर्ण काम जियो। श्लोक शरदा लागी संग प्रीत में, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए, कर गहलीनी साजन है, जन्म जन्म के मीत, चरणहा दासी कर लई, नानक प्रभ हित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया, सावन पादवे आनंद जियो, धान उन्नम बुठे, जल तल पूरिया मकरंद जियो, प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई, हर नाम नवनिध ग्रह भरी, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे, प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे, कृपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर का

है कोई साजन संत जन, नानक प्रभ मेलन हार। बिन मिल बे शांत ना उपजै, तिल पल रहन ना जाए। हर साध शरणागति, नानक आस पुजाय। संत रोत शरद अडम्बरु, असु कट के हर प्यास जियो। खोजंती दर्शन फिरत, कब मिलिए गुणतास जियो। बिन कंत प्यारे नह सूख सारे, हार कंगन त्रिक बना। सुंदर सुजान चतुर बेती, सास बिन जैसे तना। ईत उत दह दिस अलोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो। बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के पवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महा।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग पै ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

भवन मह गुरु गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा।

उगवै सूर असुर संघारे ऊचौ देख शब्द विचारे ऊपर आदि अंत तेहो लोय आपे करे कथे सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रत्ते पत होय राजन राम रवै हितकारी।

मुग्ध गुवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लाहा नाम पूंजी वे साह नानक सच

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिया जा लहे मलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करतै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर कीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। गगन अगम अनाथ अजूनी, अस्थिर चीत समाध सुगुनी। हर नाम केत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ कर मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले। गुरमुख तोल तलावे तोले, गुरमुख आवे जाए न संग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावे पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यों घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जान। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना। लिखिया किरत तुरे परवाना, सीजै जोबन जरुआ सिर काल। काया सीजै पई से बाल, जापै आप प्रभु तिहु लोई।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस नरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची खोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटे नेहो के बोलह सही, टूटे बाहां दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपण, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपण, निरपौ नाम बखान, डूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोए, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तहते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिले, तिनकै हौ बल जाओ, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाओ, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाव, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारे जाओ, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

कंद ग्रंथ विण नावै क्यों छूटी है, जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी, अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है, गुर बिन ज्ञान ना होए, टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वजोग, विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग, तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत चुगह मिले एक से तिनको फास न रंच,

भंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान धन गय बह चूरी है धन मह चीत गवार धन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार धन गया ता जान दे जे राच है रंग एक मन दी जय सिर सौंपी है पी करते की टेक धंधा धावत रह गए मन में है शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेते गुरु गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत ना छूटी है विण गुर जमपुर जाही ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछताही ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान विण नावै निरभउ कहां क्या जाना अभमान थाक रही केव अपना हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रियो प्रियो जे करी मेले मेलन हार।

छूटिए पापे पचह पचाहे फिर फाही फासह कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यो मछली फाथी जम जाल विण गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रह लिवलाए इव छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराय बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाय बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बालै ने जे लोड़ है वर कामणी सतगुर सेवह ते बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावै तैं दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन खड़िए कर कर भजे ताहे उसारे उसरे ताहे सर पर सुख है पी पर भूख है समरथ वे परवाह है परम भलाने भये दीवाने विण भागा क्या पाइए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइए पब्बे भल है गुरमुख बूझै ता निज कर वासा पाइए पब्बे भोजन मार्ग

चाहे फुल आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वदै उताहे, सेजन उभरे जिन हर पाया

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द

खरा तू खिमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर, मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर, हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार, जंत अपाए विच पायन करता अलग अपार, सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए, संपै कौ ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है, संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर, बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान, हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान, हों हों करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान, हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार, नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार, हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार, हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार, हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार, लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार, करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार, लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार, जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय, बलिहारी गुर अपने जिन हिरदय दिता दिखाय, पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरै सहज सुभाय, विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय, मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय, मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय, पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे, नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली, सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार, नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी, साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ, नानक संत मिले सच पाईए सहज पाए जस लेउ, क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए, रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ, साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ, कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ, नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु, घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई, सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई, आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई, गुरमुख बूझै आप पछाणे सच्चे सच समाई, दुनिया सागर दुत्तर कहिया क्यों कर पाईए पारू, चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बीचारू, आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम पार जरामी तुझ क्या बैसन दीजे, जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गा।

क्यों निरपहु घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों शेदे बहराइए, गुर कै शब्द हमे बिख मारे, ता निज कर होवे वासु, जिन रच रचिया किस शब्द पछाण, नानक ता का दासु, कहां ते आवे कहां इहो जावे, कहां इहो रहे समाई, एस शब्द को जो अर्थावे, तिस गुर तिल ना कमाई, क्यों तत्ते अवगत्ते पावे, गुरमुख लगे प्यारू, आपे सुरता

वह गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

आय गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मन मुख भूलै जम की कान पर कर जो है हाने हान मन मुख भरम पवै बेबान वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबान नानक साच रते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद बीचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर बिद जानी गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै बीचार गुरमुख निबहै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द अचार शब्द भेद जाणै जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमह ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाय साच रतो पत स्यो घर जाय साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि गुरमुख सारे अपसर बिद जानै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारी नानक गुरमुख शब्द निसतारी नामे राते हों मैं जाए नाम रते सच रही समाई नाम रते जोग जुगत बीचार नाम रते पावह मुख द्वार नाम रते त्रे भवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान बीचार बिन नावै बोलै सब वेकार नानक नाम रते तिनको जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाय जोग जुगत सच रह समाय बारह मह जोगी परमाई सन्यासी छे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय बीचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाय गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई बिन

आपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखै बिन शब्द नाहीं पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मन मुख ना बूझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मुख द्वार तत न चीनै मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए तां की कीमत करै ना कोय जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाए शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत विरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुंदहा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख हों मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सहसा गया बलाय। ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय। अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय। नानक

आप पिसाए पिसाए तै सह बात न पुछिया कबहू ना लाई पाए। महला तीजा। नानक मेहदी कर कै रखिया सो सहो नदर करी आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाई ले। यो पिरम प्याला खसम का जय पावे तैं दे पौड़ी वेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवे जाए समाई। आपे वेख विग सदा दूजा को नाही ज्यो भावै त्यो रख तू गुर शब्द बुझाई। सबना तेरा जोर है ज्यो भावै तिवे चलाही तुद जेवड़ मैं नाही को किस आख सुनाई। श्लोक महला तीजा। परम भलाई सब जग फिरी हावी होई भाल सो सहु शांत ना देवई क्या चले तिस नाल। गुर प्रसादी हर त्याई है अंतर रखिए उर धार नानक घर बैठिया सहु पाया जा कृपा कीती करतार। महला तीजा। धंधा धावत दिन गया रैन गवाई सोए कूड़ बोल बिख खाया मनमुख चलिया रोए। सिरे उपर जम डांड है दूजे भाए पत खोए हर नाम कदे ना चेते हो फिर आमन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै जम डांड ना लागे कोए नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी। एक अपनी सिफती लायन दे सतगुर मती एक नानू नाऊ बख्शियन अस्थिर हर सती पौन पानी वै संतरो हुक्म करह भगती इनानू भौ अगला पूरी बणत बणती सब इको।

कोई राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए क्यों कर मृतक होए कहया शब्द ना मानी हों मैं छड्डै ना कोई गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होए भय का संयम जे करे दारू भाउ लाए अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भउ जल नाम तरे नानक गुरमुख पाईऐ जा कौ नदर करी पौड़ी दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझ बिचारा सब किस तेरा खेल है सच सिरजन हारा जिस भावै तिस बख्श लै सच शब्द समाई।

ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मूखंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द संभाले, सतगुरु की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन संसार की वर्तन, गुरमती घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए ना आखियन, जिनके चित में भरम किस दै दितै नानका, ते हो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए।

लोभ रथ विचों जाए, ज्यो बै संतर धात सुध होए, त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बने आशिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार भरम गया ता जागिया, चूका अज्ञान अंधार।

घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो पिस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

क्यों जीवै जुगत, कन पड़ाई क्या खाजै भुगत, आसत नास्त एको नाऊ, कौन सो अखर जित रह आऊ।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी करना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे भीख्या खाई। ऐसी दरगाह मिले सजाई रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दह सिर लंक गवाई। जिन सीता आंधी दौरू वाई रोवे है पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया। एकी कारण पापी भया रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे भीड़ रोवे है राजे कन पड़ाए। कर कर मांग है भीख्या जाए रोवे है किरपन संच है धन जाए। पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

जान नानक गाहक क्यों लए सकै ना वस्त पछान महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म हो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर देसा आपे तारी लाइन सब मह परवेसा आपे सिख साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच प्रगटिएसा सब किस सचो सच है गुर सोजी पाई। श्लोक महला पहला। सावन रात आहार देहु काम क्रोध दोए खेता लब वत्र दरोग बियो हाली राह कहेता हल विचार विकार मन हुक्मी खटे खाए नानक लेखै मंगिया औत जनींदा जाए। महला पहला। पौ पोए पवित्र पानी सत संतोख बलेद हल हले मी हाली चित चेता वत्र वक्त संयोग नाउ बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग।

दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कढोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक कि

बंकुड़ा बंके काय सवार गर्भना की जय नानका मत सिर आवे भार पौड़ी सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच ध्यान से सच्चे जिन हर खर्च धन पल्ले भगत सोहन गुण गाम दे गुरमत अचले रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द भले आपे मेल मलाए दा आपे दे वड्याई सलोक महला तीजा आसा अंदर सब को कोई निराशा हुए नानक जो मर जीव्या सहलाया सुए महला तीजा ना किस आसा हथ है क्यों निराशा हुए क्या करे एह बपड़ी जा भलाए सोए पौड़ी त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन सास सास अराधे निर्मल सोए जन अंतर जामी अगम रसना एक भन रव रहे सरबत नानक बल जाई सलोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै वै पाणा सरवर अंदर ही रा मोती सो हंसा का खाना बगला कागना रही सरवर

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजी रटिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुरु देहो देखाल आऊं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

प्रभ तोहे। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे, गुर पूरै मेलाया जत देखा तत सोए। जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड अवर ना कोई, पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिय, जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिय। कोई ना किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग दे कै आप कर, करदा अनद बनोद किशु ना जानिए। सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए, गाइए रात दिनंत गावन जोगिया। जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। सलोक महला पंजवां भीड़ो मोक लाई कीतियन, सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन। सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा, लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर। हर नानक नदर निहाल महला पंजवां, बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख। देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख, गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पात रखै आप सो भवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै। जिसे जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै। सलोक महला पंजवां, धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए। धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ, जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ। तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए, जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै।

जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौं बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसके मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम साध ही भोगे भोग महला पंजवां।

ब्राह्मणी टिचर रखण गांड जित दिन किश ना हो गई तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराद मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवै चेता तिसनु सदा सुख जिस

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसां विच बैठा बग न बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार।

बगला मत हुआ मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवं पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त

माणक सरवर पर पूरे खाए खर्च रहे तो उठना आवे। सरवर हंस दूर ना होई करते एवं पावे। जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे। आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

सत्तर सत्तर समाने औगण कटे करे शुद्ध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवां। ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवां। सतगुर सिमरो अपना, घट अवकट घट घाट,

पंजवां दूजा तिस ना बुझायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगमय गोचर साहिबो समरथ सच दा तार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिख्या रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक

पाए अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कणावणे ना तू आवह वस बेद पढ़ावणे ना तू आवह वस

आवह वस बहुता दान दे सब को तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। श्लोक

भोग हरख आनंद हुक्मी जपे निरोधर गुरमंत हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगे अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवे धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआव। जन्म पदार्थ सफल हुए मन में लायो पाव। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवां नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणै जप तप संयम भाणै ही कढ ले। भाणै जून पवाई है भाणै बख्श करे। भाणै दुख सुख भोगी है भाणै कर्म करे। भाणै मिट्टी साज कै भाणै जोत तरे। भाणै भोग पगाए दा भाणै मनह करे। भाणै

जो नर पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सवनड़ी दे बिरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देहे सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आसरै प्रभ स्यो रंग लाए औगण कट मुख उजला हर नाम तराय जन्म मरण भव कट्यों फिर जोन ना पाए अंधकूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाई नानक बख्श मलायन रखे गल लाई सलोक महला पंजवा महब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवा अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रवया हब थाई।

में लो गुर का शब्द गुण की नरी तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरी कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस पेओ रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

भरोसे मग हर बस्यो मेरे तन की तपत बुझाई पहले दर्शन मग हर पायो हुन कांसी बसे आई जैसा मग हर तैसी कांसी हम एक कर जानी हम निर्धन ज्यों इहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कमन फल पाया भावले धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि पलाई जे सिमरन तुझ पूहै ना माई। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइय संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नाक सिख इव

ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पुवंगा पेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकतै बक शब्द सुनाया।

मदे परमियले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल कै घर जाओ गो रहाओ हिड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दुए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो तीर्थ देखना जल मह पैसो जी जंत ना सतावो गो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही पीतर नाओ गो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावो।

अहर सिंह राता सुन समाद समाऊ। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई ना किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसे।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पा।

परम पुरुष की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र ले।

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दुख बहु कीने, सब पर हर पास तरी रहाउ, हर हर नाम जप है आराध है, सेवक भाई खरे, किल बिख दुख गए सब नीकर, ज्यों पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दुख असाद नगर में, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देह प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुगद निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर किरपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दुख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, ज्यों चंदन संग बसै निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन यारे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे, जिनको तुम हर राखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे।

बालक स्वामी हमरा खुह वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानु हो हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानु हो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपयो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भये हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भये गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान ध्याना।

बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल नाटक।

कीता, बिन सह दुख विपरीता, सब अर्पो मन तन चीत रहाओ, कोई विरला आपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर भज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होहे पनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपदिया महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम मेरे मन तन नाम आधारी, खिन पल रह ना सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम संभारी रहाव, हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारी, दीन दयाल भये प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सुवारी, मधुसूदन जग जीवन माधु, मेरे ठाकुर अगम अपारी, एक बिनो बेनती करूं गुर आगे, मैं साधु चरण पखारी।

दहदिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिय संक उतारी सतगुर मिलिय परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने पी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़ी जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींच।

हर अमृत सर नावारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी, कर नारायण बोलारी, मेरे ठाकुर कै

विचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी। जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी। जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी। साकत स्यो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी। साकत बचन बिशुआ ज्यो डसिए तज साकत परे परारी। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी। गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल बिस्कारी ज्यों ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी संतन संत साध मिल रही है गुण बोल है पर उपकारी संतै संत मिले मन बिगसै ज्यों जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सत

बाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो।

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जो दरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाइए बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो, हर राम नाम मैं रहो लागो।

कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो ब्रह्म पौ भागा रहा पै पाए भगत लागो मेरा ही अरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन भये शांत आई हर उर धार्यो वड भागा मन मुख रंग कसुंभ है कचुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मह बिन सजाए परतापै दंड धर्म राई का लागा सत संगत प्रीत साधे अत गूड़ी ज्यो रंग मजीत बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग नाल है सुभागा हर चार

अवर कहना झूठिया नित करे जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वोह साध के ताज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर जा कै सिमरन कुल है उधर जा कै सिमरन पौ दुख हरै।

तरे नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण में है सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहो अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौ

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथून आल जाल बिकार तज सब।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

कहो ना छोड़स किसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कहो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम नाराच है एक

नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

साही बिन दर्शन कैसे रहो स्नेही। मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाम सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई।

अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए। गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

आनंदिन त्याई हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू आन देन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर दे।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपै अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरि अंगीकार करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरियो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिबलाई साधिक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जपियो ते पाई।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम नया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लए छडाए जिथै अवकट गलियां पीड़ियां तिथै हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंदपो मैं हर बिन अवर नाम आए रहाऊ।

सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भाग हीन मर जाए। ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए, ओए जम दर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए। तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय, हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाई। हर जियो आप दयाल हुए जन नानक।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाई कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरा मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

भाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े जप हर हर नाम छुडावे जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचा हर देहु पसाऊ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो नवे सिदर सर्वह अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जियो माया मोह भिकम है पहारी क्यों तरिये दुत्तर संसारी सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लगावे जियो।

पर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन

0: बात सुनी
1: सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए दुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी एह कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहियो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनीत।

तिस को कभू ना गाव सरी, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, वा को फिर ताव सरी, अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी, बैरी संग रंग रस रचिया।

तीर्थ कावसरी जिसका जास सुनत भव तरी ता स्यो रंग न लावसरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकावसरी।

गुण भ्रम छूटा ज्यों प्रभ भये सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने किसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीत।

बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह एयानथ ताज सारंग हर भ्रम तू।

भूला मोहे लपत्यो दासी संग सानथ रहाओ। धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावत। फोकट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत। पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत। खतरी

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी नींद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लो

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह।

प्रभु जी अखोट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकाड़ घड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था। कहो नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया।

परम मन का सतगुर सरणी जाय। कर्म जिस कौ तुरहुं लिखिया सोई कार कमाई। पाओ लागा गोबिंद सिंह काल पाई थाई। खेत मेरे जमिया नखुट ना।

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाउ रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू मा

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

मेरा मारू महला पंजवां कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आग्या का।

पंजवां पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलाखे अपारा दान पावों संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बड़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाओ अवगत सिओ मानिया मानो गुरमुख तत ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन त्रिपत अगाए सहज समाध सुपहाय हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतरह पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबहु ना।

महा भोजन माहे तुलो हो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाओ साध संगत गुण उचा।

साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

दिया समुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाता महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाऊ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावण।

सो भर गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

कै सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख घणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

साच पठायो लेख मुख तमाण तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुद भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजै को नहीं मन तन पूरण दे।

लालह गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लालह खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

कार है तुर खसम फुरमाई लालै हुक्म पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बख्श ले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच है गुर

आई। नानक नाम रखे से निर्मले साक्या रहे समाई। मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं, तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया। सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है, सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना। बुझ शब्द

चलना मुख अमृत नाम मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मिल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देखै सोई जिनकी आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जम

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत सेवी है।

थीऐ पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत सु

उर्द लिब लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

एतयोत ढूंढत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे, खावै भोगै सुन सुन देखै, पहर दिखावै काल करे, बिन

ओ हो मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख धूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बुरु दोह नैनो नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे हैं जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम बसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावह जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमर हो गुर बचन समार हो संगत हर जन पाव करे।

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे पतन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

बिरथा जन्म गवाया, अग्गे बिन नावे को बेली नाही, बूझे गुर बिचारी जियो, अमृत नाम सदा सुख दाता।

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुंडे तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरा बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रतन जवे हर बन जन आयो कानर लाद चलायो जे घर में तुद रहना बसना सो घर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उरजायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनुग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम

तब की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किशना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

निच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपाल।

कृत सग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुटह हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

ओ मन माही तिस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जो नी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्म दुरमत जाली है जित जित लाव है तित तित लगना।

काल जोबन तन छोड़ वंजेसा करण करीम ना जातो करता दिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण जीता नित वखानिया।

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बन

चित चल है पर कर जो है कर नहीं पाल है काया नगर टह टह तेरी बिन शब्द पत जाई गुरते बूजै त्रिपवन सूजै।

साहिब सबना सिर पाए मिले पव जाई हे भूले चूके मार्ग पावे आप पलाए तू है समझावे।

ठहराई जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सहदाता तिल ना तमाई पारपुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई क्या सलाही अगम

गगन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईऐ साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे मां की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई हे तुझी ही किया जम्मन मरना गुर के समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई हे निज कर बैस रहे पहु खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल विगास हरे सर सुपार आ

चारी खेल तमाशा तुंदू कारी बाजी खेल गए बाजीगर ज्यो निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे भवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हम मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जीए क्यों सुख पावे दुए तीए निर्मल एक निरंजन दाता गुरपूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली।

राती हर प्रभ संगी पहो ना परांति श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी ज्योति ज्योत मलाई है रख रख पैर तरे पहु तरना।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई रीतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाने मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्दी होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरन।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावे है, ज्यों तुद भावे तिवै चलावे है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी, मन

तन तन अर्थ मिले जग जीवन हर सियों बणत बनाई प्रभ की गत मिट कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती।

उस्तत करह पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह। कल मल मैल नाही ते निर्मल कोई रह भगत लिवलाई।

शब्द घर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे ना कोई, साच शब्द पेंज है पत होई, आपे बख्श लए किस भावे।

कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल संभाले, सो अंतर दाना बीना ही, गुर सरवर हम हंस प्यारी, सागर मह रतन लाल बहुसारी, मोती माणक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना ही, हर अगम अगाह अगाध निराला, हर अंत न पाइए गुरु गोपाला, सतगुर मत तारे तार नहारा, मेल लए रंग लीना ही, सतगुर बाज हो

मुक्त कराई, सब रोग गवाए अमृत रस पाई, जम जगात नाही कर लागे, जिस अग्न बुझी ठर सीनाई, काया हंस प्रीत बहुतारी, ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी, अहनस भोगै चोज बिनोदी, उठ चलतै मता ना की नाही, सृष्ट उपाय रहे प्रभ साजै, पौन पानी बह संतर गाजै, मनुआ डोलै दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाही, नाम विसार दोख दुख सही है, हुक्म भया चलना क्यों रही है, नरक कूप मह गोते खावे, ज्यों जलते बाहर मीना है, 84 ही नरक साकत पोगाई है, जैसा की कहते सो पाई है, सतगुर बाजो हो मुक्त ना हुई, किरत बांधा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यो पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की नाही, मीत सखे केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर

कर लै चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इं समदर्शी चीना ही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर्मा।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हम मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

अवतारी अगन पानी सागर अत गहरा गुर सतगुर पार उतारा ही मनमुख अंदले सो जी नाही आवह जाहे मरह मर जाही पूर्व लिखिया लेख न मिटई जम दारे अंध खुआरा ही एक आवह जावह कर वास न पावह किरत के बांधे पाप कमावह अंदले सोजी बूझ न काई लोभ बुरा अहंकारा ही फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा पर फिर राती खसम बसारा ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है त्यों फोकट कार विकारा ही प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे नरक पचह

अगन बिख झाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा बुरिया राही मस्तक भार कलर सिर पारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद ताना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै भगत रते पतिया राही साकत माया कहो बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुण अंत

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां फुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

मत खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहु हर गुण गावहु तत विचारहु हर लिव लावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

मूढ़ कपट महती का अहन सनिंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरया हम मैं करता पवजल परया।

गुप्त रहता ही। चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूबह दाजह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पंच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

कहो क्यों लखिए जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यो प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सबाई कत दीपक गुरमुख जाता ही भोजन ज्ञान महारस मीठा जिन चाखिया तिन दर्शन दीठा दर्शन देख मिले बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेव है से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जहां को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुद्धताहाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाए जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ले शब्द सच्चै ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताही दुख मह जन्मे दुख मह मरना दुख ना मिटे बिन गुर की सरना दुखी उपजे दुखी बिन सै क्या ले आया क्या ले जाही सच्ची करनी गुर की सिरकारा आवन जान नहीं जम तारा।

राम नाम घटे अंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफत सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे नानक साच मिले पत राख हो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

वह वस्त संभाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोलाईंदा पीतर कोट गुफा कर जाई।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारी रूप ना रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद।

तुझ ते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन।

जात ना जन्मा ना को दुख सुख पाएंदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाए।

गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुर ते सूझी हुई, नानक साच रते बिस्मादी।

किसै बुझाईंदा नदर करे पूरा गुर पीटै जम जंदार न मारै फेटै ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याईंदा आपे वरखै अमृत धारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ।

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी जोत त्रिपवन सारी, सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरते आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई, त्रिपवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी, उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, उपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्मे

दुख पाया जिसनो कृपा करी हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दस अवतारा सिष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरे भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा कोई बूझो ज्ञानी करहो नबेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभे कूड़ कमाईंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाद सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाईंदा मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग पिसकी छाया जिस बाप न माया ना तिस भैन ना भराउ कमाया ना तिसे उपत खपत कुल जाती ओह अज रावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत सीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

गुर ज्ञान रतन दी पाया, पंच तत् मिल एहो तन किया, आत्म राम पाए सुख तिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाति, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल बजाया, बेण रसाल बजावै सोई, जाकी त्रे पवन सोजी होई, नानक बूझो हो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन बिरले संसारे, गुर शब्द विचार है रह निरारी, आप तरह संगत कुल तारह, इन सफल जन्म जग आया, घर दर मंदर जान सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतर दस हाक दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिख चाखी, अंतर वसत अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवै दिन राती, एहो साच वडाई गुरमत लिव जाती।

निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिय अकल गाए जमते क्या डरिय।

सरना सच गुर शब्द जित लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जो नी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पव जल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपज बिन सुख पाया उपज बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईए बिन गुर राम नाम क्यों त्याईए गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारे गुरमत शायर पाहन तारे गुरमत ले हो परम पद पाईए नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मरारी जम के फाहे काट है हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत यज्ञ निवार

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

हरे अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखै, एहन सजोत निरंतर पेखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपूरै देखाया। सतगुर मिलो आपे प्रभ तारी, सस कर सूर दीपक गहनारी, देख अदिष्ट रहो निव लागी, सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया। अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए, अनुभव पद पावे आप गुआए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपियै अंत ना पाया। अंतर नाम परापत हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा, दुखट घट पौ भंजन पाईऐ, बहुड़ जन्म ना जाया। भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावै गुर मेल मलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप जपयो सतगुर मतवा के, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल भारत राया। एहो पौजल जगत शब्द गुर तरीय, अंतर की दुबदा अंतर जरीय, पांच बाण ले जम को मारै, गगनंतर तनख चढ़ाया। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ, शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरै पहाग मलाया। निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुर गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजै, गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है हर

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिस को मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम त्याए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै, आसा माहि निरास रही जै, संसा दुख बनासन सेव हो, फिर बहुड़ रोग ना लाया, साचे पावै तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो होमै, पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया, तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया, न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सो, गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया, नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई।

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै। सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रव रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

सेवा ते शब्द पछाता एको अमर एका पातशाही जुग जुग सिरकार बनाई है। सो जन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रति गुण गावे।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हुमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मुए हर नाम निवासी। अन दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। इशनान दान करह नहीं बूझ, एक मनुआ मार मन स्यो लूझ, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे भाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेवह से जन साचे, मनमुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखै, ज्यों पावै त्यों लाई है। जुग जुग साचा इको दाता, पूरै भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जमै दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो लिवलाई है। जोत सुभावै सोई करसी, आपो हो आ ना किस होसी।

रस लाई, गुरमुख लिव साखी सहज समाई, आपे मेलै आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु ना जाई। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखै उर तारे, सतगुर सेवा ते सुख पाया, हर कै नाम समाई। है दूजे पाए फिरै देवानी, माया मोहे दुख माहे समानी, बहुते पेख करै नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। है किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावै तित राहे चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावै

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावह अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम भुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा साधी डुब

तो होएगा। आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज व्यापारा।

ਬੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਐ ਸੋ ਪਤ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਧਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ।

पवन पी जय ही माया लहर शब्द निवारी इहु मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता।

मुक्त निरारी, गुरमुख ज्ञान एको है जाता, अन दिन नाम रवीजै ही, वेद पढ़ै हर नाम ना बूझै, माया कारण पढ़ पढ़ लूझै, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरीजै ही, वेद बाद सब आख बखान है, ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है, पुन पाप सब वेद दिरड़ाया, गुरमुख अमृत पीजै ही, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक नाम रते मन साचा, सचो सच रवीजै ही, मारू महला तीजा, सच्चै सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथै मोह न माया, सद ही साच वस्या घट अंतर, गुरमुख करनी सारी हे, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथै भरम ना दूजा पासारा, सारा

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब

सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है, सीजन सुखिये सतगुर सच्चे लाए, आपे भाणे आप मलाए, सतगुर राखे से जन उबरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कटंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सबना जिया काया धारी है, हम मैं मेरा दूजा पाया, किसना चल तुर खसम लिख पाया।

भगत परे भंडारी हे, आपे वेखै हुक्म चलाए, अपना भाणा आप कराए, नानक नाम रते बैरागी, मन

जिन अपनाया पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

तोल, ज्यों पावै त्यों राखह रहना, गुरमुख एको जाताई, जातुद पाणा ता सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई।

दूजी दुर्मत शब्दे खोई एक समय प्रभ एक सुमाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे आना गुर प्रसादी काया खोजे पाई जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सुबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा।

कह तेरी बिन शब्द चूके नहीं फेरी साच सलाहे साच समावे जिन गुरमुख को जाता ही जिसनो

तीजा आपे करता सब जिस करना जी जंत सब तेरी सरना आपे गुपत वरतै सब अंतर गुर कै शब्द पछाता ही हर के भगत परे भंडारा।

मुख द्वारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर सिउ चित न लागे दूजे पाए घणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाण हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राताही जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हऊ मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण काहे को दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते।

रत्न अमोलक अगम अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोल तलाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़ है शब्द ना बूझ है।

तीजा सो सच सेव हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम अथाहा आपे सच्चा सच वरताई।

लाई, सच्ची भगती आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म काला हाही, गुरमुख बणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जाण है, सच्चा साहु सच्चे बणजारी, पूंजी नाम वसाहाही, आपे साजे सिष्ट अपाई, विरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारी साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई।

तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम लिव लागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाओ आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप तो वरत मन मुख का क्या विसाहाई से मन मुख जो शब्द ना पछाण है गुर के भय की सार ना जान है भय बिन क्यों निरभउ सच पाई है।

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई अन दिन भगत करहो निवलाई हर गुण गावह सद ही निर्मल निर्मल गुण पातशाही गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक जन नाम

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाजै पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन

कमल बिगसह बुद्ध ताहाए अपनी गहन गत आपे जाने होर लोक सुन सुन आख बखाने ज्ञानी हो ऐसो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहाए देही अंदर वस्ते अपारा आपे कपट खलावन हारा गुरमुख सहजे अमृत पीवे तृष्णा यगन बुझा।

हमरा पद हुए गुर के शब्द रस ताहाई आप पछाणे सो सब गुण जाने गुर के शब्द हर नाम बखाणे अन दिन नाम रत्ता दिन।

घट अंतर सो घट निर्मलता ही सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गाव है आपे बख्शे शब्द मलाई परमल वास मन ताहाई शब्दे कथ कथे सलाही मेरे प्रभ साचे वे परवाही आपे गुण दाता शब्द मलाई शब्द का रस ताहाई मनमुख भूला ठहर ना पाई जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई बिख्या राते बिख्या खोजै।

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द है कारज के हाही खिन मह हसै खिन मह रोवै दूजे

बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चा हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चा नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाए जां तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाए, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

का पसारा। सतगुर सेवहै से सुख पावहै, सच्चै शब्द मलाइंदा। पौण पाणी है बै संतर, माया मोह वरतै सब अंतर।

खबर न पाई अंत गया पछताईंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाने नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाईंदा मारू महला तीजा आद जगाद दे।

अंतर परम गया पहु भागा सदा आनंद सच्चे गुण गाव है सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाय मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाएंदा कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराए करता ज्यो भावे तिवें चलाएंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत ना पछाने आपे करे कराए करता आपे परम पलाएंदा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजी गर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चौ होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याएंदा।

0: जाप ताप संयम नाम प्यारा, किल बिख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल हुआ, सहजे सहज समाईंदा,
1: अंतर लोभ मन मैले मन लाए,
0: मैले कर्म करे

गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवे सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वासना हुई काम क्रोध जले सब कोई।

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जियो दाता अगम अथाह ओस किल ना तमाए वे परवाह तिसनो अपन ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो

हट नाले सतगुर दिखाए अंतर नाले नावे काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारी है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवड भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच कमावे सदही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूकै माया, अगे जम काल लेखा लेवे, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरा भाग गुरसेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाई।

रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चलदियां घर दर नजर न आवे।

ना ओ पाया से बड़भागी गुर कै शब्द मलाईंदा जाया कोटे आते अपारा तिस विच बह प्रभ करे विचारा सच्चा न्याओ सच्चो वापारा निचल वासा पाईंदा अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभै सलाही सच्ची हर सच्चा।

हर दिन हर सेवे हो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसिया।

दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर हो गुर

मेल मलाए आपी शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पा।

कर्म ते आया जत सत संजम जे सच कमावे एह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस भिख मह अमृत प्राप्त होवे हर जियो मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जमे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चे ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

दुख पाया। आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उर तारी, गुर के शब्द मरे मन मारी, हों मैं जाहि समाया। आवन जाने पर जब गोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई, अंतर ज्योत शब्द सुख वसिया, ज्योति ज्योत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह काय हो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा, सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

के माही समाया, घरै अंदर को घर पाई, गुर कै शब्दे सहज सुपाई, उथै सोग वियोग ना व्यापै, सहजे सहज समाया। दूजै पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरह बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावह, दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई, सहजे गुण रवह दिन राती, ज्योति ज्योत मलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगह गुर शब्द निवासा, उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई, निज कर वासा पा।

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवे जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गा

अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरणी चित लाई है। जिस भावै किसी

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर को सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवे। गुरमुख नाम समाए समावे, नानक नाम त्याई है। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आख बखाणी। हर हर करत सदा मन बिगसै, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जीव, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता,

भूर समाही सूके ते फुल हरिया कीतन हर त्यावो हो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी हे जो जिया की सार न जाने किस सिंह किस न कहिए अजाने मूर्ख सिंह नह लूज पराणी हर जपिय पद निर्वाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी हे ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसै सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिया सारंग पाणी हे अन दिन नाम जप हो बनवारी सब आसा मनसा पूरै थारी जन नानक नाम जप हो भव खंडन सुख सहजे रैन विहाणी हे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द परम भव भागै विचे ग्रह सदा रह उदासी ज्यों कमल रह विच पाणी हे विच हों मैं सेवा थाए ना पाई जन्म मरै फिर आवै जाए सो तप पूरा साई सेवा जो हर मेरे मन पाणी हे हों क्या गुण तेरे आखा स्वामी तू सर्व जिया का अंतर जामी हों मांगो दान तुझे पै करते हर अन दिन नाम बखाणी हे किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवन ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे निमाणे मान करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे जिनका पख करह तू स्वामी इनकी ऊपर गल तुद आणी हे हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेवया तिन सुख पाया बिन सेवा पछो ताणी हे तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसाणी हे मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कला उपाय तरी दिन धरना गगन रहाया हुक्मे चरना अगन उपाय ईंधन मैं बांदी सो प्रभ राखे पाई हे जी जंत को रिजक संबाहे करण कारण समरथ अपाहे खिन मह थाप यथापन हारा सोई तेरा सहाई हे मात गर्भ मह जिन प्रित पालिया सास ग्रास होए संग संभालिया सदा सदा जपिया सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई हे सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब नवाज करे प्रभ मीरे गर्भ निवारण सर्ब सुधारन किस कीमत कही ना जाई हे सो पतवंता सो तनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता मात पिता सुत बंद पपाई जिन एह सृष्ट उपाई हे प्रभ आए सरना पौ नहीं करना साध संगत निश्चौ है तरना मन बच कर्म अरादी करता तिस नाही कदे सजाई हे गुण निदान मन तन मह रविया जन्म मरण की जोन ना पविया दुख बनास किया सुख डेरा जा तृप्त रहे आगाई हे।

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में है सोब सुहाई है जय जयकार जपो जगदीस बल बल जाई प्रभ अपने ईस तिस बिन दूजा अवर ना दिस एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीव है जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा।

किर्त संयोगी पय इकत्तरा करते भोग बलासाही जो पिर करै सो तन तत मानै फिर तन है सिंगार रखै संगाने मिल एकत्तर वसह दिन राती प्रियो दे तनह दलासाही धन मांगै प्रियो बहु बिद तावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच न साकै धन रहती पू

ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही अन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिया सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु न समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किस कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासाई मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेख बिगसै आपे ही आप पूजा है आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा है साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाहे सच तप

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरै हम्यो तेरी दृष्टि जाहि तेरी दात तुझै ते होवै देह दान सब सह जंत लोवै टूट न आवै पूर भंडारै तृप्त रहे आगी जाहि जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा खिन मह थापयो थापन हारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहि जिस देह दर्श सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने चतुर स्वरूप सियाणा सोई जो मन तेरै पावी जाहि जिस चीत आवह सोवे परवाह जिस चीत आवह सो साचा साहा जिस चीत आवह तिस पौ केहा अवर कहा किस की जाहि तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुर पूरै लै टूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हम्यो चोल चोल पी जाहि मरै नाही सद सद ही जीवै अमर भया बनासी थीवै ना को आवै ना को जावै गुर दूर किया परमी जाहि पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी चढ़ै सवाया नित नित रंगा कटै नाही तोली जाहि बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया परख खजाना।

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फस है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन न भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई।

नहीं जम्मै सब लाहा मूल गवाएंदा कल युग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारी हर दरगाह पत स्यों जाएंदा खंड पताल दीप सब लोआ सब काले वासे आप प्रभ किया निश्चल एक आप अबनासी सो निश्चल जो तिसह त्याएंदा हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानुह मानस देहा ज्यो जल तरंग उठह बहु भांति फिर सलल सलल समाएंदा इक जाचक मंगै दान द्वारे जा प्रभ पावै ता कृपा तारे देहो दर्श जित मन तृप्तासै हर कीर्तन मन ठहराएंदा रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै कीता लोड़न सोई कराएन दर फेर न कोई पाएंदा जितै औकट आए बनत है प्राणी कितै हर त्याई सारिंग पानी जितै पुत्र कलत्र ना बेली कोई तितै हर आप छडाएंदा वड्डा साहिब अगम यथाहा क्यों मिली है प्रभ वे परवाह काट सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दुइ समसर सही है हम मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति ज्यो पिता पूत लडाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिए जा लए मलाई गुरमुख प्रगट भया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा तू आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय धरी सब धरना जन नानक शरण पया हर द्वारे हर पावे लाज।

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजे त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजे। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भय पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेट है गुरपूरा ता पारस परस दखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई है हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले पार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरियां सच सोवा। सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाक दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब कूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख ना लखिए एक खिना। करण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लावो जन्म पदार्थ सोजिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे करम गुर का जप जपना। सर्ब निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरना। गुर का शब्द वसै मन जाकै
दुख दर्द प्रमता का भाग है, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सोतनवंता जिन प्रभ त्याया, सुपतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सो पूर कर्मा नाशिना, जल पल महियल स्वामी सोई, अवर्मा कहिया दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काटे ओ ब्रह्म सगला, अवर्णा दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रव तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ तां के पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना, तू सबना का सब को तेरा, साचे साहिब गहर गंभीरा, कहो नानक सेई जने उत्तम, जो भाव है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा, प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना, हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचै जा चंगना, मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटहै हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना, सर्वणी सुनो बिमल जस स्वामी, एकाओट तजो बिख कामी, निव निव पाए लगो दास तेरे, कर सो कृत नाही संगना, रसना गुण गावे हर तेरे, मिट है कमाते अब गुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पांच दूत तज तंगना, चरण कमल जप बोहित चरिय, संत संग मिल सागर तरिय, अर्चा बंदन हर समत नवासी, बहुड़ जोन ना नंगना, दास दासन को कर ले हो गोपाला, कृपा निदान दीन दयाला, सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना, मानता ने अर्प धरी हर आग्ञा, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हाथ त्यागी हौं मैं हंतना, जल फल पूर्ण अंतर जामी, कट कट रव्या अशल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना, जत कत पेखो प्रभ सुख सागर, हर टोट भंडार नाही रतनागर, अगह अगाह किस मित नहीं पाईऐ, सो बूझै जिस किरपंगना, छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी दंजा, कर गह काड लिए प्रभ अपने, हमें उतार दृश टंगना, एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाई, आद मादे अंत प्रभ रव्या, त्रिशन बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना, जो पेखा सो सब किस स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, सरल सहाई संत है तना, जाचक जाचै तुम्हें अराधे, पतत पावन पूर्ण प्रभ साधै,

दीता करन करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाए ता जग मह आए जो तुद पाणा से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए ईहां हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बार कथारे ज्यों खलावे है त्यों खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही को कास एक ही को राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना अत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावे आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाय समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे सीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक नाही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवां अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारेखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन अजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश कूरम आग्या अवतरासी केस

ऐसो होएगा निराहारी निर्वैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे देन सुनत सब मोहेगा बनमाला बेपूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आपो हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखान सहस फनी सेख अंत न जान नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राख हो साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण लै हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्बला, कहो नानक भगत पये सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तै आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भाव है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा बार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेख मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारफत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले महमौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथै खैरी, पंजवै पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ तो वह मैं लाना, पीर पछाण पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जा को मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाए कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे थापे साजी, प्रब की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका, चरण कमल सरन आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारे, जप हर हर भो नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, किसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते ते

जिन विसरह नाही काहू बेरा, इनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन मह चाह, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत बेद बखानी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिये, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहिया दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक घोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत छाडिया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अन ग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है तिसे जनावना, जां कै मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदह कटह ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जा।

पहला गिण गाहक गुण वेचिया तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख बकाए, गुण ते गुण मिल पाइए जे सतगुर माहि समाए, मोल अमोल ना पाइए बंजना लीजै हाथ, नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया।

गुर तीरख दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बन आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यों प्रीत उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटै मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन तृपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादे उबरे जिन हर रस चखा आप कराए करे आप आपे हर रखा।

आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंद कापड़ जिवै पछोड़ी है कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल महला तीजा त्रे पवन ढूंढी सजना हम मैं बुरी जगत ना चुर ही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐथे उथे मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौ कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहुक सुध जे गुण होवन ता फिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहलस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती लार महला पहला ससुरह पेय कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भावे है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सोबह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निहचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है त्यों कीमत कीजै आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

सहज बनस्पत फुल फल भंवर वसै भय खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मन सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोई किस सरनाई छूटी है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे हिरदय जिस दै सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड़ियाई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवह सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव ना पार। किरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। तृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई। नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटै सोए। पौड़ी दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा। शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवै शांत पाई जप सास ग्रासा। सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। सलोक महला तीजा। हुआ पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुख चार। नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए। झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नदर करे। आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै। अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै। सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती। दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास। इश्क महबत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई। हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे। हिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे। इन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगश्मी दुख कनेरो आत। कालर लादस सर लांगणो लाभ ना पूंजी सात। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार। नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान। माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम। पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम। एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम। इकनी सुनकै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै। एक पद रहीद अत डापन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल बेद से बाजणु कणु तड़िए जोए। नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोए। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए। वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा।
ਮਝ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया, कीमत कही ना जाय। पौड़ी, इस युग में नाम निदान है, नामो नाल चल है, एहो अखुट कदे नान खुटई, खाए खर्चियो पल्ल, हर जन नेड़ ना आवई, जम कंकर जम कल्ल, से साहा सच्चे बन जा रहा, जिन हर तन पल्ल, हर कृपा ते हर पाई है, जां आप हर कल्ल। सलोक महला तीजा, मनमुख वपार सार ना जाननी, बिख विहाज है बिख संग्रह, बिख स्यों तरह प्यार। बाहर हो पंडित सदाएं दे, मन हो मूर्ख गावार, हर स्यों चेतना लाएनी, वादी तरन प्यार। वादा किया करन कहानिया, कूड़ बोल कर है आहार। जग मह राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार। नानक नाम ना चेतनी, होए मैले मरह गवार। महला तीजा, दुख लगा बिन सेवे, हुक्म मन्ने दुख जाए। आपे दाता सुखै दा, आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए, सब किश तिसै रजाए। पौड़ी, हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामै तृप्त नाही। दूजै परम पलाया, हौं मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु ना पाईए, जे बहुत लुचाही। आवै जाए जम्मै मरै, गुर शब्द छुटाही। आप करै किसे आखीए, दूजा को नाही। सलोक महला तीजा, इस जग मह संती धन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभयाई। सतगुर सच दृढ़ाया, इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लखी, सुख वस्या मन आय। जिन्ना को तुर लिखिया, तिन्नी पाया आय। मनमुख जगत निर्धन है, माया नो बिल लाय। अन दिन फिरदा सदा रह, भुख ना कदे जाय। शांत ना कदे आवई, नह सुख वसै मन आय। सदा चिंत चित वधार है, सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय। सदा सदा सुख मह रह, सच्चे माहे समाय। महला तीजा, जिन उपाई मेदनी, सोई सार करे। एको सिमरहु पाई रहो, तिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया, जित खादै सदा तृप्त होए। पैनन सिफत सुनाए है, सदा सदा ओह ऊजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया, थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द शिंगार है, जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझिया, जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी, अंतर जप तप संजमो, गुर शब्दी जापै। हर हर नाम ते आईऐ, हौं मैं अज्ञान गुआपै। अंदर अमृत भरपूर है, चाखिया साध जापै। जिन चाखिया से निरपो भए, से हर रस त्रापै। हर कृपा तार पी आया, फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा, लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी। गुण ना व्याजै कोए, गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईन, जिसनो नदर करे। महला तीजा, गुण अवगुण समान है, जे आप कीते करतार। नानक हुक्म मन्ने है, सुख पाईए, गुर शब्दी विचार। पौड़ी, अंदर राजा तख्त है, आपे करे न्याय। गुर शब्दी दर जानिए, अंदर महल असराव। खरे परख खजाने पाईन, खोटिया नाही थाव। सब सच्चो सच वर्तदा, सदा सच न्याय। अमृत का रस आया,
मन वसिया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरते सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवै नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलै क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक किस शरणागती जिन जग ते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं भय की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखी है जे बूझ ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अगे जात ना पुछी है करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित भावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा तिवही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवा
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवा उठी झालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस शार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या हुए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जनते उपाय अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया। तू जान है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोहया कद पसी जानी तोहे। महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे। महला पंजवा दुर्जन दूजा भाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपड़ कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवे है आप दयाल तिस लावे है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई। महला पंजवा थबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही न वंजे बिरथड़ा जो घर आवे चल। महला पंजवा सेज वछाई कंत कु किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी। तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवे है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही किस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही। दखणे महला पंजवा जामू पसी हठ मैं पिरी महिंजे नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल। महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ईसाई मुँह खड़ा। महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी। सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेव को आपे पूजनता दाना बीना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता।
ज्यो आप चलावह त्यो चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवां कुरिए कुरिए वैद्या तल गाला महरीर वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर महला पंजवां सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवां पोरे पोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवै रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जाण है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपरपरा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवां गह डरड़ा तृण छाया गाफल जले ओह पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवां नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवां नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हो मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकती हारिया केवै हर पाइया एक विचो ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचो बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां अगाह कूतरांग पिछा फेरना मुहडड़ा नानक सिज अवेहा वार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मित हबे जानने अपना कहीं ना ठाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लखमी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारे है जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवां देखण कू मुस्ताक मुख कजिया कौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवां दुखिया दर्द घणी वेदन जाने तू धनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा महला पंजवां कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या
तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सबना का मित है, सब जान है आपे, ऐसी शोभा जने की जे वडहर प्रतापे, सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापे, दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी

सुदमार निवाड़ा गुर भौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवा जा मूह आ वह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो न पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंझाऊ सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा।

पौड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्पयो हऊ मैं तजो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहिब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिग साम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इख बेई पीड़े ना हुटै महला पंजवा।

ते पाया राम ते भवह न बारे बार रहाउ। झूठा जग डहकै घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न पई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुन्द्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समा वहंगी। सुन है सुन मिलया समदर्शी पवन रूप होए जा वहंगे। बहुर हम काहे आवहंगे आवन जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बुझ समा वहंगे रहाउ। जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चका वहंगे। दर्शन छोड़ भये समदर्शी एको नाम त्या वहंगे। जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमा वहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समा वहंगे। जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बताव हो। एक अनेक होए रहो सगल मह अब कैसे परमाव हो। राम मोह को तार कहां ले जई है सुदो मुक्त कहां देओ कैसी। कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तबे लग कही है जब लग तत ना जानिया। अब तो बिमल भये घट ही मह कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन। काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे। तह हर को नाम छडावन रहाउ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन। कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना। नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना। बाबा अब ना बसो एह गांव करी करी का लेखा मांगे। कायत के तू नाउ रहाउ। तर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पहारी। पंच किरसानवा भाग गए लह बांधे हो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को।

देता। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके, दूल्हा प्रभु की शरण परेउ, मुक्त भयो चौहू जुग जान्यो, जस कीरत माथे शतर तरेउ, राजा राम जपत को ना करेउ, गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परेउ रहाउ, शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डरेउ, निरपौ भये राम बल गर्जित, जन्म मरण संताप हिरेउ, अमरीक को दियो अपै पद, राज पपीखन अधिक करेउ, नौनिध ठाकुर दई सुदामै, त्रू अटल अजहू न टरेउ, भगत हेत मारेउ हरनाखश, नरसिंह रूप होए दे धरेउ, नामा कह भगत बस केसव, अजहू बल के द्वार खरु, मारू कबीर जियो, दीन बसारे उरे दीवाने, दीन बसारे उरे, पेट भरियो पशुआ ज्यो सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहाओ, साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो तंदे झूठ, स्वान सूकर बायस जिवै, भटकत चालियो ऊठ, आपस को दीर्घ कर जान, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्म ना, मैं देखे दोजक जात, कामी क्रोधी चातुरी बाजी गर्बे काम, निंदा करते जन्म सरानो, कबहू ना सिमरियो राम, कह कबीर चेते नहीं, मूर्ख मुग्ध गुवार, राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार, राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चंद सत भेदिया नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया, अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया, अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया, मन आदि गुण आदि विखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ, अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया, बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया, कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियरा

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया धावत पंच रही।

थापे मन मानिया, जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया, सो प्रभ गुरमुख जानिया, करन कारण समरथ अपारा, त्रे विद मेट समाई, नानक अवगुण गुण।

साची सच मत तेरी साजन देस वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाईए पिर पारे सतगुर शब्दी मिलै विछुनी तन मन आगै राखै नानक अमृत बिरख महा रस फलिया मिल प्रीतम रस चाखै महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजै अन दिन रतड़िए सहज मलीजै सुख सहज मलीजै रोस ना कीजै गर्भ निवार समाणी साचै राती मिलै मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ नरारी नानक आपै आप पछाणै गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा भाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारे गुर रूप मरारे त्रे पवन धारी

थाप उथापी तिस भावै सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुण है समाणी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूकाया वन जानू।

साचा गुरमुख तरिय तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरे आ तू समझ अचेत अणिया राम ए मन मेरे आ छड़ अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाने किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिय जम डर मरिय जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधिया इन विद छूटे गुरमुख।

नाम गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघार हे भय काट निरपहो तरह दुत्तर गुर मिले कारज सारे रूप रंग प्यार हर सिंह हर आप कृपा तारे ए मन मेरिया तू क्या ले आया क्या ले जाए सी राम ए मन मेरिया ता छुट सी जा भरम चुकाए सी राम धन संच हर हर नाम वखर गुर शब्द भाव पछाण हे मैल पर हर शब्द निर्मल महल घर सच जान हे पत नाम पावह घर सदावह झोल अमृत पी रसो हर नाम ते आई है शब्द रस पाई है वड भाग जप

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्स ना होए क्यों अमृत पीवीऐ राम क्यों अमृत पीवीऐ हर बिर जीवीऐ तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटोह कुमाई, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिए राम, हम मूड़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुन तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग है सत गुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा, जो तुम प्यावे जगदीश, ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर धरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोले, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवे है ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना।

पंखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो हो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हो आतनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला।

अवस्था। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख मात, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप एक निमख सब लाथे जिन गुर बचनी हर जापया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हों भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घनी, जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिये रखन हार, हर संत संगत जन सुनो भाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी, तू थान थरंतर हर एको एक रविया, वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया, सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावै, सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे, सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया, तू थान तनंतर हर एको एक रवया, तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है, जिसकै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है, हर गुण हृदय टिक है तिसकै, जिस अंतर भौ भावनी होई बिन भय किनै ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई, भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै, जिस तू अपनी कृपा करै तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है, तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे, हर पाया प्रभ अवनासी हर आप करतै पुरब किया, सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले, गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया, जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेलाया, तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ, खबर पई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया, जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ, दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम ते आया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लय सब छुटक गया, दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया, सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया, आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई,
भाई हम करहें क्या किस पास मांगहें सब पास।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाउ थे हो गुवाया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

त्यो नानक हर गल लावी ऐरी। केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय हर।

अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वा

माई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत।

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गमन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

नाम प्रीत लागी मन भीतर मांगन को हरदान रहाउ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखु मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दामोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रंगहु चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवां हर के दर्शन को मन चाऊ कर कृपा सतसंग मलावहु तुम देवहु अपनो नाउ रहाउ करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाउ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाउ सर्ब प्रित पाल है सगल समाल है सगलिया तेरी शाऊ नानक के प्रभु।

पुरख बधाती कट कट तुझह दिखाओ। केदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मह चितवो आसा नैनहु तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूरत पल कैसी ओए पल घरी के हारी खुले कपट तपत भुज तृष्णा।

अहम बुद्धत जावहु अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाऊ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग न

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चालस साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाओ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ। नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात। सरल समराथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन तूर जन बाँचत मिले।

ते हरी अब एह प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी केदार

हाँ, अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेल मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

आओ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नजर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई सहज सुपाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी सरनाई तू पूरन पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदिया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदिया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वश्यल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उरहारी।

टेढ़े टेढ़े हस्त चर्म बिष्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ। राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह।

खान, भाउ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एहे बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाओ, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग केदारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

पद है अमरेऊ, राम भगत बसेख रहाउ, स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावै हेत, लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश, अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास, राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी।

होए। क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किस करना सो तेरे पास।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, पैरों महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री तुंद करन पय बहरे, मनमुख नाम ना

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा, गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा, भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही, दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया, जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी, रहाओ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर धंधा, काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई, शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे, शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने, भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती, राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावे, आप मार अपरा

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

ते जग जन्मा बिख खावै बिख बोली बोलै बिन नावै निःफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणै संध्या कर्म तिकाल करै बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरै दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करै। राम नाम बिन शांत ना आवै जप हर हर नाम सो पार परै। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवै किरत कै बांधै भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिन देही का अकारा घट वध को करै बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोए जागत रह ना मूसै कोई। रहाउ सो जागै जिस सतगुर मिलै पंच दूत ओह वसगत करै। सो जागै जो तत बिचारै आप मरै अवरा नह मारै। सो जागै जो एको जानै परकिरत छोड़ै तत पछाणै। चहु वरना विच जागै कोई जमै कालै ते छूटै सोई। कहत नानक जन जागै सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। भैरो महला तीजा जाको राखै अपनी सरनाई साची लागै साचा फल पाई। रे जन कै स्यो करो पुकारा हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा। रहाउ एहो आकार तेरा है तारा खिन मै बिनसै करत ना लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया।

कोई खोजो हो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई, रहाव मूल मोह कर करतै जगत अपाया, ममता लाए भरम भुलाया, इस मन ते सब पिंड पराणा, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै, मन का सुभाओ सदा बैरागी, सब मह वसै अतीत अनरागी।

आप उदरे सब कुल उधारन हार बिन नावै मन मुख जम पुर जाहे औखे होवै चोटा खाहे आपे करता देवै सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरो महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुभाई

नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दलब है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाउ, राम नाम जन पाल है सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर के शब्द नाम निशान, सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार, पैरू महला तीजा, कल युग में बहु कर्म कमाहे, ना रुत

तन मन खोज करे मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया त्यो लोए। कल युग मह हर जियो एक, होर रुत ना काई। नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा घर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई। मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई। हौ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा। सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई।

माने आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे न निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले तां मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हिरदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहा। मनमुख मूल गवावे है लाभ मांग है लाहा लाभ किड्डू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवे दिन राती हमे रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूज है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाई खवाई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाई।

लाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया से जन सोहे, हृदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माण। जो किश कह सो भला कर मान, नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा, मनसा मन है समाए लै। गुर शब्दी विचार, गुर पूरे ते सो जी पवै। फिर मरे ना वारो वार, मन मेरे राम नाम आधार। गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच्छ पजामन हार रहाऊ। सब मह एको रव रहिया, गुर बिन बूझ ना पाई। गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ, अन दिन हर गुण गाई। सुख दाता हर एक है, होर थै सुख ना पाए। सतगुर जिनी ना सेव्या दाता, से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख ना लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाई। भैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई, मर मर जमे सदा दुख पाई। डर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ। पेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौंकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राखिया उरतार। ज्यों तिस भावे तिवें चलावे, करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा, हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय, मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर स्यों कदे न लागे प्यार। रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै,

नाही। हर सुखदाता मेरे मन जाप, हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप। रहाऊ जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिस को तुम हर राखिया पावे, तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरू महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम संवार। मधसूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया। तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की। हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै। जे किश होवै हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी। हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे। ओह पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई। जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी। जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्स देख मन बिगसै। खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हृदय जप नाम मरारी। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी। रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हृदय वसिया पनवारी। तिनकी सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी। ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी।

सो तुद मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन भीना तिन हम श्री मह नित चरनी जग जीवन हर त्याए तरनी अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गनने रहाउ गुरसिख हर बोलो हर गावहु ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख घने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी।

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौण रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई पैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाख गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होए।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरू महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरू महला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह तिन निंदह, नगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटिया आप पय सरनाई, गुरमुख नानक जगत तराया, पहरों महला पंजवा, बन मह पेखियो तृण मह पेखियो, ग्रह पेखियो उदासाई, दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहूं दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

पर ग्रह जाई दरबे रह मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्त संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लीलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करहे सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई।

तर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोई। पहरों महला पंजवा, तौ कड़िया जे हुवे बाहर, तौ कड़िया जे विसरे नरहर, तौ कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहया समाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नाम भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने, तौ कड़िया जे पूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यो करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहे आसमाए, राखो पैज नानक सरनाई, पहरू महला पंजवा।

बिरथी सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हों त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दिष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानू।

फिर फिर जोनी भरम रोग बंद रहन रत्ती ना पावे बिन सतगुरु रोग कत है ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहां पकड़ रोग हो काज लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया भैरों महला पंजवां चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरै दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणी चीत आवे ता चूकी काणी चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी नीत हमारे सदा अभनासी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अंत अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहयो इहु सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरु महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार। इहु मन दीजै ताको वार, सिमरन ताकै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा। हर

आवे बेसवा भजत किस नह शर्मावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हार राज रहया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाई गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरों महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावी थाओ जुगह जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोए।

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोज।

तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभ दात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ, हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दतारा, तौ प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर

अणहुंडा पार निंदक सिर धरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजे पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारा वेद अरनाद।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरू महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

प्रभ खंडो रोग दुखिए काम टावो प्रभ सोग न थावे को तुम थान बैठावो दास अपने को भगती लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसै जाने अपने कै हर मन बसै पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत मंडल मह

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हौ मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवां, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाउ, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किछ जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

पुत्र गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइय वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावै त्यो रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

सुख वसह माने आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गात हुए रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शन हार भगत पाए सदा।

आवण जान रहे हर त्याई, भगत पाए प्रभ की लिव लाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की तेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण कराव नहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी।

बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतरै दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पैर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करनै हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरो महला पंजवां गुरसो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मह लए दीन दयाल सदा किरपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद घने साध संग मिटे भय भरमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिन मह बिन स्यो महा परेत आठ पहर हर हर जा

नानक पाया नाम निदान पैरों महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अवनासी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत देखो तेरी सरना बल बल जाई सत

रोग सब किस तेरा तू करना हार पार ब्रह्म गुरे अगम अपार निर्मल सोभा आचर्ज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंत।

सो तलवंता जिस बुद्ध विवेका सो कलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया।

ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣ ਭੇਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाय।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखै हाथ, निमख न छोड़ै सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आदि जुगाद भगत गुण गायन।

त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं पंग पैरो महला पंजवां। निंदक को फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को राखनहार, निंदक मुआ निंदक कै नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ। निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पछोर है सिर तरन लगाहे, निंदक को दई छोड़े नाही, हर का दास किस बुरा ना मांगे।

अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दायाया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हम कबहु न छोड़ो हर का नाम रहाव। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, लै पाती पांदे कह आया, नाम बिना न पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवित ना पढ़ो रही समझाए,

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुरु गोपाला, कीता हुआ श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आए पहुता, जन स्यो वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दाता।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटा।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

नानक तिनकै सद बलिहारे राम नाम उर तारी भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए इस सलाही जिस हर तन रास सोवड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाउ जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता।

परवाहा। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साह, नाम हीन नाही पत वे साह। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस भयो कृपाल, साध संगत मह लखे गोपाल, आवन जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत मलाया। भैरु महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद हमारा, बन ना साको गुण बिस्तारा। रहाउ कोट माया जा कै सेवकाई, कोट जी जा की सह जाए, कोट अपार जना तेरे अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट बिस्थारन अवरना दूजा, कोट महमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट।

बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो भरमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाउ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कत है ना जाई, रहाऊ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो,

आख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाउ, जो निरतन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए, जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए, निर्धन सर धन

पज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज लेहरे मन सारिंग पानी, अब ना भजस भजस कब पाई,

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रियंग माया मह खापे

जाती। साकर माखी अधिक संतापी, तुरे उष्ट माया मह पीला, सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला, शे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरज अरचंदा, तपेर खीसर माया मह सूता, माया मह काल अर पंच दूता, स्वान स्याल माया मह राता, बंतर चीते अर सिंगाता, मां जार गाडर अर लूंभरा, बिरख मूल माया मह परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही

हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सतर साई सलार है जाकी, सवा लाख पै कंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे, रहाउ ते 30 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना, बाबा आदम को

सबं का पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जान गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सात संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा, अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत, कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास, द्वादश दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत, अर्ध उर्ध

मन अस फिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट बेद उचरे।

फिर है, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी कर श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा कर, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लाख

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामै दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामै हर आगै धरी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन भया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ता को करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

सर्ब जाई उस्तत निंदा करे नर कोई नामे श्री रंग पेटल सोई कबहू खीर खान की हो ना पावे कबहू घर घर टूक मगावे कबहू कूर्ण चने बिनावे ज्यों राम राखे त्यों रही है रे भाई।

फिरै, भगत जना को देहुरा फिरै, भैरों नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसी।

ही पाचहारी राम कह करताल बजावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाव बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कूपियो मोहे बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख है हर नाखश जिन नखह बदारे हो सुर नर किए सनाथा कह नाम देहो हम नर हर त्याव है राम अपै पद

अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना पजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की घट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

कोई, पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ। सो मुन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक समाए, मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अन पै रह, फल कारण फूली बन राय, फल लागा तब फूल बुलाए, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास, कृत कारण

बिन बूझे सब खड़ी अस बंद, जेते जी लिखी सरकार, करनी ऊपर हो अगसार, हुक्म कर है मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कैर मैया नेड़ नाए जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

हुए तीर्थ पवै दसंतर लोए। नानक मिलिया सतगुर संग तौ पवजल के तू तस बंद। बसंत महला पहला

अमृत नामा महला पहला बसंत हंडोल घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बंद हो दया करहु दयाला काहे कलरा सिंचो हो जन्म गवाव हो काची तहग दवाल काहे गच लाव हो रहाओ कर हरहत माल टिंड परोव हो तिस भीतर मन जोव हो।

मति इन बिद पावो प्राणपति रहाओ पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही पीतर।

न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहू गुरु सुखदाता हर मेले भुख गवाई कर किरपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होए ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए पल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाना आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर

प्यारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारी जन नानक उर हरे अमृत तारी।

तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगति का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचे प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नाम सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाई नानक नाम बसे मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बनराई गुरमुख बिबसै सहज सुपाई अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईए नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिए शब्द कमाई।

नाम रता जन प्रगट हुए। एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचे पाए। साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर। एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए। जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया। बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर। संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई।

बहु अभमान अपनी पत खोए, सेवद भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया, घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा, नाम नव निद पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए, आप करे किस करण ना जाए।

मन मौलिया हर गुण दाता नाम बखाने रहाउ भगवै वेस भ्रम मुक्त ना होए बहु संयम शांत ना पावे कोई गुरमत नाम प्राप्त होए वड भागी हर पावे सोए।

हरे सब लोए, फल है खुलिय है राम नाम सुख होए। सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उर तारे। मन बसंत तन मन हरिया होए, नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए। बसंत महला तीजा, तिन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे भाग हर भगत कराए। इस मन को बसंत की लगे ना सोए, एहो मन जलिया दूजे दोए रहाओ। एहो मन धंधे बांधा कार कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए। एहो मन छूटे जां सतगुर भेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे। एहो मन छूटा गुर लिया छदाए, नानक माया मोह शब्द जलाए। बसंत महला तीजा, बसंत चढ़िया फूली बनराए। एह जी जंत फूल है हर चित लाए, इन बिद एहो मन हरिया होए। हर हर नाम जपै दिन राती, गुरमुख हों मैं कड्डै धोए रहाउ। सतगुर बाणी शब्द सुनाए, एहो जग हरिया सतगुर पाए। फल फूल लागे जां आपे लाए, मूल लगे तां सतगुर पाए। आप बसंत जगत सब वारी, नानक पूरे भाग भगत निराली। बसंत हंडोल महला तीजा, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर की बाणी बिटो वारिया पाई, गुर शब्द बिटो बल जाई। गुर सलाही सदा अपना पाई, गुर चरणी चित लाई। मेरे मन राम नाम चित लाई, मन तन तेरा हरिया होवे। एक हर नामा फल पाए रहाओ, गुर राखे से उबरे पाई। हर रस अमृत पियाई, विचों हों मैं दुख उठ गया पाई। सुख बुठा मन आई, तुरे आपे जिन्ना नो बख्शियो न पाई। शब्दे लयन मलाई, धूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई। सत संगत मेल मलाई, आप कराए करे आप पाई। जिन हरिया किया सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाई। शब्द मलावा होए, राग बसंत महला चौथा कर पहला। एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत। एको हर रविया सर्ब थाए, गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ। घट घट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहिया भरपूर, सागत नर लोभी जान है दूर। एको एक वरतै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पांच प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ। मनमुख फिर हों मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे। भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी।

लाए। देखत दर्श पाप सब नासह, पवित्र परम पद पाए रहाउ। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया। गुरमत खोज परे तब पकरे, धन साबत रास उबरे।

या पाखंड भरम अपाव कर थाकी हृदय अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मलावे नानक शांत हुए मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड पुरख वड अगम गुसाई हम कीरे किरम तुम से हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा गुर सत गुर चरण हम बनछे गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृपछे जन्म जन्म के किल विकमल भरिया मिल संगत कर प्रभ हमसे रहा तुमरा जन जात अव जाता हर जप्यो पतत पवीसे हर कियो सगल भवन ते ऊपर हर सुबा हर प्रभ दिन से जात अजात कोई प्रभ ते आवे सब पूरे मानस तिन से तन वड्डे वड पूरे हर जन जिन हर धार्यो हर उरसे हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी हर धार कृपा प्रभ मिलसे जन नानक गुर पाया हर तूठे हम किए पतत पवीसे बसंत हंडोल महला चौथा मेरा एक खिन मनुआ रह ना सके नित हर हर नाम रस गीदे ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता थन काढे बिलल बलीदे गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे वड्डे भाग गुर सत गुर पाया विच काया नगर हर सीधे रहाउ जन के सास सास है जेते हर बिरह प्रभु हर बीदे ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी बिन जल देखे सुख लीदे जन जपयो नाम निरंजन नर हर अपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की हमै मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्मना बिचरहो ठाकुर तुम पैज रखो अपनीदे हर भावै सुन बिनो बेनती जन नानक सरण पवीदे बसंत हंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे तिल घर नहीं वासा पाईए गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाईए गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईए हो मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाईए रहाउ कर रतन लाल बहुमानक लादी मन भ्रमया लह ना सकाईए ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढे त्यो सतगुर वस्त लहाईए जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाईए मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाईए जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाईए बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान पया दुख बिखिया देह

दयाल नाम जप तो होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जाके भगत आनंद मैं जाके भगत को।

कैसे उदाहरण गुरह पीर, तुम दाते प्रभ देन हार, निमक निमक तिस नमस्कार रहाउ, जिसह परापत साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग, ते बंधन ते पये मुकत, भगत अरादह जोग जुगत, नेतर संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन अगाना हर रसह स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान, बसंत महला पंजवा, तुम बड दाते दे रहे, जी प्राण मह रव रहे, दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवां तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए एहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जिसके तारे तरन आकाश कट कट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निदान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना रहा।

ला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगता भली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत, बसंत महला पंजवां, हुक्म कर कीने निहाल, अपने सेवक को पया दयाल।

पर फूल तारहे अब कलु आयो रे। एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही, मत परम भूलोह भूलोह गुर मिले हर पाए। जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे, गुण कहे नानक हर हरे हर हरे। बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई। दुबदा दूर करहो लिवलाई, हर नामे के होवो जोड़ी। गुरमुख बैसो सफा विछाए इन बिद

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंगावै मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवा। मूल ना बूझै आप ना सूझै, भरम व्यापी अहंग मनी। पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तार हो निर्गुणी। रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै, एह बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मह सुखिये से जनी। अवर अपाओ ना कोई सूझै, नानक तरियै गुर बचनी। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हंडोल महला नौवा। साधो एह तन मिथ्या जानो, जा भीतर जो राम बसत है। साचो ताहे पछानो रहाउ, एहो जग है संपत सुपने की। देख कहां ऐडानो, संग तिहारै कछु ना चालै। ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर। हर कीरत उरियानो, जन नानक सब ही मैं पूरन। एक पुरख भगवानो, बसंत महला नौवा। पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल याते गहयो ना जाए। रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास, सब ही पर डारी एह फास। जेह देह हर को नाम समार, ते भव सागर उतरे पार। जन नानक हर की सरनाए, दीजै नाम रह गुण गाए।

गाछुह पुत्री राज कुवार नाम भणुहु सच दूत सवार प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिख त्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो भरम से आए जाए अत लुभ लुभानो बिखम माए नह अस्थर दिसै एक पाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझस साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवर तार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार मैगल ज्यो फासस काम हार कर बंधन बांधियो सी।

कदे नाही गुर शब्द सुनाए मत अगाए तू मोटो ठाकर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर हुए एकत राचे पर हर दुए दूर दर्द मत अमृत खाए गुरमुख बूझे एक समाए तेरे दर्शन को केती बिल लाए।

पीता हरख सोग ते रह निरासा अमृत चाख हर नाम निवासा आप पछान रह लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा गुर दी या सच अमृत।

थाप आपे बशरू गौ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करणहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करणहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करण जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी।

करहें बखीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल।

जल है समावे बसंत महला पंजवा घर कहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल।

कर नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय देव त्याग्यो अहमेव।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए। एहे बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम तव नह संगाई विख का माता आवे जाई हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार राम क्रोध मन वस किया सुपने नाम ना हर लिया कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिसते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माहि समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ, जागे सुख देव अर अकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुत मकलाई अपनी माओ, रहाओ, पगा बिन हुरिया मारता, बदले बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलो है, बिन अस्थन गहू लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पर्ण साल, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम, रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान, मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग को प्यो रिसाई, तुझ राखनहारु मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै बिस्थार, हरनाक्ष से देहो नख बेदार, उए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव, कह कबीर को लख ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार, इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत्न हिरलीन मोर, मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को ना बेगूतो मैं को आहे, माधो दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए, रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बन जारे पांच, बरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं नकाज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज, रहाउ सात सूत मिल बन जकीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता पी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे पी जूठे, जूठे मरह अभागे,

लूठ उतर समाई, ब्रह्म अग्न के लूठे, अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी परोसन लागा, जूठे ही बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बेचारा, रामानंद जी।

यहां ना होई। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी

थला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाँकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सर तो मन चाली लाडुल।

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भ

उत्तर कलत्र का करह अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसह पकार है पियो पियो, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कहरव दास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल, इस कर्म है

साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पैराहाऊ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल करूप कुनार कुलखनी बिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाऊ इन गिद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत।

शब्द विचारी जिस मन माने अभिमान ना ताको हिंसा लोभ बसारी सहज रवे वर कामण पिरकी गुरमुख रंग सुवारी जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मूप सारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रहाउ सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग लाए धूर दुर्मत बेकार मलीन मत होछी हिरदा कसुद लागा मोह पूर बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर सारंग महला चौथा गोविंद चरणन को बलिहारी भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी हर दिन राम नाम जप हृदय।

लखारी अंतर हर नाम सर्ब धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबहू बूझ जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नद

मुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुरे आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाई। मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए। नानक नाम

हर हर पानी पंच जना गुर वसगत आनी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाद छाड जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बूझ ना सकै गवार सो किछ करै जे साथ ना चा

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी किन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राख विच कल युगे अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाउ जा को कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराउ।

तेरी मित नहीं पाईए, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवां, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। बैसलो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते

करह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब करमान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लौ बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अम्बे अम्ब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

डालर बिरख जे वहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यो उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराद एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजे हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख तेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक शिंगार रे बिन पिर सबै बिख लाग्यो पूछो पूछो दीन भांत कर को कह प्रिय दे सांग्यो हियो देव सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राख्यो चरण बंदना मोल दासरो देव साध संगत अरदाग्यो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खाग्यो दृष्ट भई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लाग्यो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरे कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहा निसबासर नखे अतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बीसरे ठाकुर प्यारु तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजे साध संगत कृपानंद नानक पूर रहो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरुषो पाए जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवह तराय रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

आई सारंग महला पंजवा ओए सुख का स्यो बरन समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाउ बिसम पई पेख बिस्मादि पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमूलक ज्यो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन अपाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारे गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे रहाउ नाम अमोला प्रीत ना तिस स्यों

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठंड हो खाए खाए मुश्कार है गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पार है निर्वैर है संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है तुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बाचत फल लही है रहाउ आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घटवासी गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वडभागे कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्ब मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जां कै संग पार ब्रह्म त्याई है अपदेश हमारी गत करन रहाउ दुख रोग पै सगल बनासे जो आवे हर संत सरन आप जपै अवरह नाम जपावे वड समरथ तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे कहो सुभर भरन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन सारंग महला पंजवा गायोरी मैं गुण निद मंगल गायो भले संयोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिझायो रहाउ संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिया दर्श दिखावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तोहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कह संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई सारंग महला पंजवा वाह अवसर कह हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप भरम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किलबिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्श प्यास सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए।

है अघावन पान को। अकाल मूर्त है साध संतन की, था हरने की ध्यान को। वाणी मंत्र महापुरखन की, मन है उतारन मान को। खोज लहियो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को। सार महला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाय। रोग सोग तेरे मिट है सगल अग, निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ। छोड़ सियानप बहो चतराई, साधु सरनी जाए पाए। जो होए कृपाल दीन दुख भंजन, जमते होए धर्म राय। एक सबिन नाही को दूजा, आनना बियो लवे लाए। मात पिता भाई नानक को, सुख दाता हर प्राण साए। सार महला पंजवा, हर जन सगल उधारी संग के। पये पनीत पवित्र मन, जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ। मार्ग चले तिन्नी सुख पाया, जिन स्यो गोष्ट से तरे। बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जोरे। तिनकी धूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे। सार महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याय। एक पलक सुख साध समागम,

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर तार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा। कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो, भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ, निकट सुनो अर पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया। एक निमख जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलाख बरिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया। सार महला पंजवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहिया, दे नाओ बलिहारी रहाओ। चहो बिस फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मूख गरुड़ारी, हाथ दे राखियो कर अपना, जो जल कमला अलपारी। हो नाही किस मैं क्या हुसा, सब तुम ही कल तारी। नानक भाग परयो हर पाछे, राख संत सदकारी। सारंग महला पंजवा, अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते, कर्म कारण समरथ स्वामी, हर एकस ते मेरी गाते रहाओ। देखे नाना रूप बहुरंगा, अन नाही तुम भांते, देहे आधार सर्व को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते। प्रमतो प्रमतो हार जो परयो, तो गुर मिल चरण पराते। कहो नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बेहानी राते। सार महला पंजवा, अब मोहे लभ दियो है हर टेका, गुर दयाल पये सुखदाई, अंधलै मानक देखा रहाओ। काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया, बुद्ध विगास विवेका, ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है, सेवक ठाकुर पये एका। जहते उठियो तह ही आयो, सब ही एकै एका, नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई, प्राण पति हर समका। सारंग महला पंजवा, मेरा मन एकै ही प्रिय मांगे, पेख आयो सर्ब थान देश, प्रिय रोम ना समसर लागे। रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन, तिन स्यो दृष्ट न करे रुचांगे, हर रस चाहे प्रिय प्रिय मुख तेरे, जो अल कमला लो भांगे। गुण निधान मन मोहन लालन, सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभ पाए।

जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामू दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोगन संगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जे घर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचन जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लुकानी सारन महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपा बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत भय लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तो मन में हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तो मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पए अचिंत त्रिशन सब बुझी है इहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत

तेते दुख सहामा। गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी, हर रास नानक राम नामा। सारंग महला पंजवा, मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला। गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाई, सद दयाल हर ढोला रहाउ। प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक, मोहे कलकर सहत सब गोला। मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं बोला। जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे, कास बढ़ाव है के तक बोला। जन नानक के प्रभ पुरख बधाते, मेरे ठाकुर अगह अतोला। सारंग महला पंजवा, रसना राम कहत गुण सोहन। एक निमख पाए समावे, देख चरित मन मोहंग रहाओ। जिस सुनिए मन हुए रहस्यत, हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो, बाण आई प्रभ तोहं। किल विख गए मन निर्मल होई है, गुर काढे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रभ पाया, करण कारण समर्थ होहं। सारंग महला पंजवा, नैनहु देखियो चलत तमाशा। सब हूँ दूर सब हूँ ते नेर, अगम अगम घट।

पार बना है भक्त वश्यल गुण तासा अंध कूप में दीपक बले हो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सार महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जीता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेउ मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुरु पूरा भेटियो सुख सहजे आनंद बिहावा सार महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

चतुर अनूप बधाते तिस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाए कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद छिन मह खो पई है गुरमेल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई प्रतपाल बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकी बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइए आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरनी पाइए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाइए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताई है सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दा तेरे काट सिल्क जाओ अपना कीनो नानक सुख कनेरे सारी महला पंजवा प्रभ सिमरत दू

सूझै प्रभ बिन। कहो को किस पह जासी, ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर, सब किस तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अपनासी। कहो नानक मन आनंद भया है, काटी जम की फासी। सारंग महला पंजवा, मेरो मन जत कत तुझ सुमहार। हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे, ज्यों जान है त्यों पार है रहाल। जब भूख हो तब भोजन मांग, अघाए सुख सघार। तब अरोग जब तुम संग बसतो, छुटकत होए रवार। कमन बसेरो दास दासन को, थापियो थापन हार। नाम न बिसरे तब जीवन पाइए, बिनती नानक एह सार। सारंग महला पंजवा, मन ते पै पहो दूर परायो, लाल ब्याल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाव। गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहू तायो। रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो। नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज सुमायो। करना आप करावन आपे, कहो नानक आप आपायो। सार महला पंजवा, अमृत नाम मनह आधारू, जिन दिया तिस कह कुर्बान। गुरपूरे नमस्कारु रहाओ, बूझी तृष्णा सहज सुहेला। काम क्रोध बिख जारू, आए ना जाए बसै एह ठाहर। जह आसन निरंकारु, एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंडू कारु। आदमा अंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारू। सारंग महला पंजवा, बिन प्रभ रहन ना जाए करी। सर्ब सुख ताहू कै पूरन, जा कै सुख है हरि रहाव। मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद कना। बड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कमन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारी। कहो नानक ते पवन पवित्रा।

पुरखा किन्हीं बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी। सारंग महला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रोहो मोह दूर कर बपरे, संग गोपाल जान रहाउ। मिथ्या राज जोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान। मिथ्या कापर सुगंध चतुराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संत है की सारान। मांगन मांगो हुए अचिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारी महला पंजवा। अपनी इतनी कशु न सारी, अनक काज अनकता भरता। उर्ज्यो आन जंजारी रहाओ, देव सचार के दिसह संगी। ऊहा नाही जह पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो। जो काम नहीं गवारी, हौ नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस।

ना होरी, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, तुटे ना काहू तोरी रहाओ, खट शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गवन ना थोरी, पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया, ऊहा गैल ना शोरी, अंध कूप मह पतत होत जग, संत हो करहो परम गत मोरी, साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पूरी, सारंग महला पंजवा।

सेवक की आप कियो बंधान, आदि जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा, तू मेरे मीत सखा हर प्राण, मन तन जियो पिंड सब तुमरा, एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा, तुम ही दिए मान, सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाइये वड भागी, नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करहो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरत कारण करना टूटी।

पूरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी, समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रम ते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वड भागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जाने आयो। सर्व सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारू नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जस सब मैं जाको छायो।

ज्ञान सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाउ। सेव ब्रंच अर इंद्र लोक तामह जल तौ फिरिया। सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया। जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा। नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा। सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ। हर हर बोल कथा सुन हर की उच्च रहो प्रभ को नाओ रहाओ। राम नाम रतन तन संचो मन तन लाभ हो पाओ। आन बेभूत मिथ्या कर मानो साचा एह सुआओ। जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यो लिव लाओ। कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपयाओ। सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ। पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी। आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी। अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी। मन बाछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरनी। सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाइए अहनस पूर्ण नाद रहाउ। सिमरत शांत महा सुख पाइए मिट जाहे सग

से ऊंचो अंत नहीं मर जात। वर्ण ना साखो नानक महिमा एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लहो हर हृदय अराध हो छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पहानी। सारंग महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मूल ते मनुख करिया एहो परता।

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आपे है एक पसारा। साध नाव बठाव नानक भव सागर पार उतारा, सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड़ भागी। एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाव, मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया। अणद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया, कर कृपा जो अपना कीनो ताकी उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाओ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारन महला पंजवा रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ, साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ, सास सास संभाल हर हर नानक सद बल जाओ। सारन महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन पाइये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नास्त है। चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ। भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार। नानक वाहो वाहो कहो ता को जा का अंत ना पार। सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई। निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम निवलाई। संत संग बन आई जन्म पदार्थ भयो पनीता, इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे, आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिय हर पेखा, करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा। रहाओ कहत सुनत किश शांत ना उपजत, बिन बसास क्या सेखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा। जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत भेखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम, कलमल दग्ध होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाओ। आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागे,
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्यो मीना जल स्यो उरझानो राम नाम संग लीवन। नानक संत चातरक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन। सारंग महला पंजवां हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ। बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल। सारंग महला पंजवां मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती

को बल होए, सगल मनोरथ पूर्णता हुके, दुख ना व्यापै कोई रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का, सुन जीवा तिस सोए, उद्म करो दर्शन पेखन कहो, कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो, दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को, चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा, जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले, बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब।

मन तन आत्म त्राप, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, साधु कै संग खाप, भगत वचल भय काटन हारे, नानक के माई बाप, सारंग महला पंजवां, आतुर नाम बिन संसार, त्रिपत न होवत कुकरी आसा, इत लागो बिखिया चार रहाओ, पाए ठगौरी आप पलायो, जन्मत बारो बार, हर का सिमरन निमख ना सिमरियो, जम कंकर करत खुआर, हो कृपाल दीन दुख पंजन, तेरिया संत है कीरा वार, नानक दास दर्श प्रभ जाचे, मन तन को आधार, सारंग महला पंजवां, मैला हर के नाम बिन जियो, तिन प्रभ साचे आप पुलाया, बिखै ठगौरी पियो रहाओ, कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति, हित नहीं कतहु पाई, पूरा सतगुर सहज न भेटिया, साकत आवै जाई, राख ले हो प्रभ समृत दाते, तुम प्रभ अगम अपार, नानक दास तेरी सरनाई, पव जल उतरियो पार, सारंग महला पंजवां, रमण कौ राम के गुण बाद, साध संग त्याई परमेश्वर, अमृत जाके स्वाद रहाओ, सिमरत एक अचुत अबनासी, बिनसे माया माद, सहज आनंद अनहद तुन बाणी, बहुर न पये बिखाद, सनकादिक ब्रह्मादिक गावत, गावत सुख प्रहलाद, पीवत अमेओ मनोहर हर रस, जप नानक हर बिस्माद, सारंग महला पंजवां, कीने पाप के बहु कोट, दिन सरैणी थकत नाही, कतह नाही छोट रहाव, महा बज्जर बिख ब्यादि, सिर उठाई पोट, उगर घन्या खिनह पीतर, जमह ग्रासे चोट, पशु परेत उष्ट गर्धव, अनक जोनी लेट, भज साध संग गोविंद नानक, कछ ना लागै फेट, सारंग महला पंजवां, अंधे खावह बिसु के गताक, नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनाथ रिजान उदर लै पुख है, माया गईया हाट, किल बिख करत करत पछतावह, कभू ना साक है शांत, निंदक जमदूती आए संघारेओ, देवह मूड ऊपर मटाक, नानक आपन कटारी आपस को लाई, माने अपना की नो फाक, सारंग महला पंजवां, टूटी निंदक की अद बीच, जन का राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ, उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे, इहां दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे, प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी, कीता अपना पाया, नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया, सारंग महला पंजवां, तृष्णा चलत बहु प्रकार, पूर्ण होत न कतहु बात है, अंत प्रतिहार रहाओ, सांत सूख ना सहज उपजे, एह इस व्यवहार, आप पर का कछ ना जाने, काम करो दहजार, संसार सागर दुख ब्यापियो, दास लेव तार, चरण कमल सरनाए नानक, सद सदा बलिहार, सारंग महला पंजवां, रे पापी, तैं कवन की मत लीन, निमख करी ना सिमर स्वामी, जियो पिंड जिन दीन रहाओ, खात पीवत स्वंत सुखिया, नाम सिमरत खीन, गर्भ उदर बिललाट करता, तहां होवत दीन, महामाद बिकार बहंदा, अनक जोन परमीन, गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है, सुख नानक हर पद कीन, सारंग महला पंजवां, माई रे चरन है उठ गही, दर्शन पेख मेरा मन मोहयो, दुर्मत जात बही रहाओ,
अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात न कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो पेख दयाल अनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खमारु रहाओ निर्मल पय उजल जस गावत बहोर न होत कारु चरण कमल सियो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारु कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारु नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारु सारी महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहि त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहि रहाउ नाम बसार चलह अन मार्ग नरक कोर मह पाहि अनक सजाई गणत न आवे गर्भ गर्भ परमाहि से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहि गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर न आवह जाहि सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भय खिन पीतर राम नाम परहार रहाउ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीतिया बहुर न जुए हार आठ पहर कब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा करदै वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

तलवार रहाओ, कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही, सारी महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाओ, जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ, बहुड़ जोन ना पाए, पये कृपाल दयाल गोविंद, भया साधु संग, हर चरण रास ना

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक बिन हो आन ना जानो द्वितीया भाव सब लूह रहा। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काढ़ी नरक ते तूह। संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिन से हम मैं हूह। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूह। सारंग महला पंजवा बिन से काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत यह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहु नाम हृदय तार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उत्तरियो संसार। जल थल महियल पूर रहो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे। सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले। नानक दास धूर जन बांछे उदरह लाग पले। सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखे कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर द्वितीया।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर शिवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग कर।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संध सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवां हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवां नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहीं त्रास सिमर अंतर जम।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंध रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चालै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तां स्यों रोचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन क्यों जीवा मेरी माई जय जगदीश तेरा जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन पाई सहज समाध सदा निवहार सियो जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रतना अमृते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदखाई एक सबिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो

सतगुर प्रसाद। मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई, हर बिन अवर न जाना कोई, हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ। शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन, हर सेती लिवलाई। हर सुखदाता गुरमुख जाता, सहजे रहिया समाई। भगतां का भोजन हर नाम निरंजन, पैनन भगत बढ़ाई। निज कर वासा सदा हर सेवन, हर दार शोभा पाई। मन मुख बुद्ध काची मनुआ डोलै, अकथ न कथै कहानी। गुरमत निश्चल हर मन वसिया, अमृत साची बानी। मन के तरंग शब्द निवारे, रसना सहज सुपाई। सतगुर मिल रही है सद अपने, जिन हर से ती लिवलाई। मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे, हर चरणी चित लाई। हर सर सागर सदा जल निर्मल, नावे सहज सुपाई। शब्द विचार सदा रंग राते, हों मैं तृष्णा मारी। अंतर नेह केवल हर रविया, सब आत्म राम मरारी। सेवक सेव रहे सच राते, जो तेरे मन पानी। दुबदा महल ना पावे जग झूठी, गुण अवगण ना पछाणी। आपे मेल लए अकथ कथिया, सच शब्द सच बाणी। नानक साचे सच समाणी, हर का नाम बखाणी। सारंग महला तीजा, मन मेरे हर का नाम अत मीठा। जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन, गुरमुख एको डीठा रहाओ। कोट कुटंतर के पाप बनासन, हर साचा मन पाया। हर बिन अवरना सूजै दूजा, सतगुर एक बुझाया। प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया, सहजे रहे सुमाई। शब्द रत्ते से रंग चलूले, राते सहज सुपाई। रसना शब्द विचार रस राती, लाल पही रंग लाई। राम नाम ने केवल जानिया, मन तृप्तिया शांति आई। पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके, ब्रह्म भेख थके भेख तारी। गुर प्रसाद निरंजन पाया, साचे शब्द विचारी। आवा गौण निवार सच राती, साच शब्द मन पाया। सतगुर सेव सदा सुख पाईऐ, जिन विचों आप गुआया। साचे शब्द सहज धुन उपजै, मन साचे लिव लाई। अगमे अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जगतो वरतै, विरला एक पछाणै। शब्द मरे ता सब किस सूजै, अन दिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूजै, होर कहना कथन ना जाई। नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई। सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी। हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कै शब्द पछानिया। बहु विद कर्म करह भाई दूजै, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नावै सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई। नाम बिना सब जग है मैला, दूजै परम पत खोई। क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ ना पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो, नामो हुए सखाई। सच्चा सच दाता कर्म विदाता, जिस भावै तिस नाए लाए। गुरु द्वारे सोई बूझै,

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राव राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे। कट कट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बढ़ाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुढ़ाई। मुक्त भय साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भय कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बद साहिब कुदरत कौन बिचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाउ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख वेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का कश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बेआप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भय निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता। कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया। अब रस माने भोग कटाने आन ना बिया कोथिया। हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का।

कमल बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे, संग ना कछु हूं जाई, कहो नानक हर हर अराध हो, कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते हो धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचे नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

मुख की गृही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धूपई मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करहे पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्गी मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कड़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

प्राण सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम, नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी, नाए मने सुख उपज नामे गत होई, नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई, नाए मने पवजल लंघी है फिर बिघन ना होई, नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई, नानक सतगुर मिले नाओ मनी है जिन दे वै सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे एक पैर ते आए, पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे, किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

सब सब धरती सब भार सबे पानी पौन सब सब अग्नि पाताल सबे पुरियां खंड सब सब लो लो आकार हुक्म ना जापी केतड़ा कह ना सकी जयकार आख है थक है आख आख कर सिकती विचार तृण ना पायो बपुड़ी नानक कह गवार।

सब कारण करता करी देखै वारु वार जे चुपै जे मंगिए दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चर नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटी है फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाही है पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिऐ पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म बीचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया घर अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुवै बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होवै लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोवै रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग घर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करकै कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनों प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगटी आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन बीचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो होमै तुटै ता को लिखिया लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाऊ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाईऐ थाऊ वेद वपारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद न चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन न भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया सलू

पाई, घर मंदिर गच गीरिया किस साथ न जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजे पाए नाओ कदे ना पाए, दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है, माया कै व्योहारी, अंदर कपट उदर भरन कै ताई, पाठ पढ़े गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बूझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्म आई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे भन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, ओए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हऊ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावह पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिया
आवन जाना दुए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवउ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरतै आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए ले नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवन दे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै पर

पाए। जे आप परख न आवे ता पारखियां थामो लयो परखाए। जे उस नाल चित लाए ता वत लह नौ नित पल्लै पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी न होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग न कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै न पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले न विछड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मनमुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्हां दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे। पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै बिकसै मोह माया। देश परदेश धन चुराए आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लय मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पड़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए। पौड़ी स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल से मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग को कढ़ो उपाया। गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया। नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार। लोभ लहर सुध मत गई सच न लगै प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार। नानक आपे मेल लए आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद। किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याए। दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह उठा शहबर लाए। सब धरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावै कृपा कर हर आपे पावै थाए। हरत सह त्यावो संत जन हो जो अंते लए छडाए। हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादिया तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृप्तै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया। तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया। हृदय कवल परगास उन मन लिव लाइया। जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोय ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा अमर वे परवाहो है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ सरनाए पवे मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई हो मैं विचों जाए।
नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिव लाए महला तीजा। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियान पहुं मैं मेरी। बहु कर्म कमावे है लोभ मोहे व्यापे, हम मैं कदे ना चूके फेरी। नानक आप कराए करता, जो तिस पावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुर पूरे मेलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर प्रभ का जयकार। सलोक

अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो

मन भिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

लागै तरै हाथ संचै समझ नहीं मूड़ धन धरती तन होए गयो धूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरै

रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ मेरी बांदी भगत छुड़ावे।

पावनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ। काम ना बिसर्यो क्रोध ना बिसर्यो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ। दर्शन पेख पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज न कछुऐ, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत।

साद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब पन का रहाउ, आगे कौ किछ तुलहा बंद हो, क्या परवासा धन का, कहां बसासा इस भांडे का, इतनक लागै ठन का, सगल धर्म पुन फल पाव हो, तूर बांचो हो सब जन का, कह कभी

अपने प्रीतम हर वर आण मिलावे सुन कन घोर शीतल मन मोरा लाल रत्ती गुण गावे बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरे गुरमोही मन हर रस लीना रहाओ सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पई सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सोहाग हरी सोग बजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन निहचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख धन सुहागण सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृपते हम मैं करत गुआया पर धन पर नारी रत निंदा दिख खाई दुख पाया शब्द चीन भय कपट ना छूटे मन मुख माया माया अजगर भार लदे अत भारी मर जन्मे जन्म गवाया मन भावै शब्द सुहाया प्रम प्रम जोन भेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाउ तीरथ तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया रतन पदार्थ पर हर त्याग गया जात को तत ही आया बिस्टा कीट पये उत ही ते उत ही माहे समाया अधिक स्वाद रोग अधिकाई बिन गुर सहज ना पाया सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बीचारा खोजी उपजै बादी बिनसै हम बल बल गुर करतारा हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार नहारा।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तौ धन साच शिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाए।

प्रकार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनों नदर करे।

मंदिर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाइय हर मेले मेलन हार मलार महला पहला घर दूजा।

सब श्याम रत परम दै दिसह थाम देह ना नाउ ना हुवै जात उतै देहो ऐतै सब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यो मेल होम जग अर पाठ पुराण जो तिस भावै सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया इहो निदान से तनवंत दिसह घर जाए नानक जननी तन्नी माए मलार महला पहला

असमान साहिब समर्थ तेरे तान जल थल ढूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर जिन तन साज दिए नाल खंभ हत तृष्णा उडना की डंज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों बखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला

ब्रह्मा विष्णु महेशा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आविचार।

बुद्ध बदा तैसा इहो संसारा जिस ते होआ तिसे समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हूं मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे निवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हूं मैं कर्म कमाए साहिब भावे सो थीऐ पये किरत फराए सतगुर भेटे मन मर रह हर नाम वसे मन आए तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाय चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाय मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहन ना जाय गुर प्रसादी बुझी है शब्दे कार कमाय नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलिया शांति उपजै अन दिन नाम लय मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख मिले।

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम सुवाही आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाद लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुख दाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों आप गवाया।

कसमे अंतरवस्या अलख्य पेवा गुरमुख होए न खाए। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवें चलाए। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खेलै हुक्म का बहंदा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हू जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई। एक सबिन मैं अवर न जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द हर त्या।

गरुड़ो शब्द मुख पाया, हऊँ मैं बिख हर मारी मन रे, हऊँ मैं मोह दुख भारी, एहो भव जल जगत न जाई तरना, गुरमुख तर हर तारी रहाउ, त्रै गुण माया मोह पसारा, सब वरतै आकारी, तुरिया गुण सत संगत पाईऐ, नदरी पार उतारी, चंदन गंध सुगंध है, बहु बासना बहकार, हर जन करनी उत्तम है, हर कीरत जग विस्थार, कृपा कृपा कर ठाकुर मेरे, हर हर हर उरतार, नानक सतगुर पूरा पाया, मन जपया नाम मरार।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदलै जाए रहाव कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मन मुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपियै सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

मन मुख मोहे मुग्ध गुवार अन दिन तंदा करत विहाय मरमर जम्मह मिले सजाय गुरमुख राम नाम लिव लाई कूड़े लालच ना लपटाई जो किछ होवे सहज सुभाय हर रस पीवे रसन रसाई।

तीर्थ याद सठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिला

चीर आधार बारिक जब होता बिन चीरे रहन ना जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहा चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आ गया एह कीनी बारक मुख मान

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूजह, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाऊ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

जो प्रिय संग राती ए हम मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे।

कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो पत सोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दी।

प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारे रहाउ, सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आसा, संत जना पह करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा, बिसरत मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दीजै, नाम आधार जीवन धन नानक, प्रभ मेरे कृपा की जय, मलार महला पंजवां, अब अपने प्रीतम स्यों बन आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाउ, एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नमै निद पाई, उदहुत पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल बनासे, पार ब्रह्म लिवलाई, तरयो संसार कठन भय सा

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु तहाया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवां बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास तुम

जगदीश्वर एकत सदा हजूरे नानक रब रहो सब अंतर सर्ब रहे आपर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना कारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप है करुणा मैं नानक सदबलिहारी मलार मोहल्ला पंजवा आज मैं बैसियो हर हाट नाम रास सांझी कर जन सियो जाओ ना जम कै घाट रहाओ तार अनुग्रहो।

अंतरजामी सब मह वर्ते ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

आई मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई कर कृपा प्रभ आप मलाई अपने सेवक को लय प्रभ लाई ताकि कीमत कही ना जाई कर कृपा पूर्ण सुख दाते।

गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान। ब्रह्म पौ दुख दर्द सब जाए, साध संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती। मन चिंदे फल पाए रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोई।

अगुआई कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग कैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन

तुमरी शरण परे पात राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई, रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई। लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रिय बिन श्रृंगार करी तेता तन तापै, कापर अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई। फिर नजीक ना बूझै बकड़ी, सतगुरु दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, हिम्मत कहन ना जाई। मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकियै साचै तान। नाम संभालस रूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मगना चालनहार। जित कर वसै तू है बिद जान, है बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब

गुर शब्द संयापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार।

गुरमत साची शब्द है सार, हर का नाम रखै उर तार, से दुख आग्या जे भोग बलासे, नानक मुक्त नहीं बिन नावै साचे। मलार महला तीजा, अष्टपदियां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर्म हुआ ता सतगुर पाईए, बिन कर्म पाया ना जाए, सतगुर मिले कंचन होइए।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई, धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई, लाहा हर सत संगत पाई है, करमी पल्लै पाई, सतगुर विण किने ना पाया, मन वेखो हृदय विचार, वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार, हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार, मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर, मेटना ना जाई, नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर पाणा पाई, मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा, त्रै गुण करे विचार, बिन नावे जम डांड सह, मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे मुख

हर हर नाम त्याई रहाऊ। हरे अपने पाने से टिपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर कै पाने सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जेवड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

कमल परगास तित काट नामे नाम निवास हौ मैं भगत करे सब कोए ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिव लाए सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवलश पाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन पूजाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाह भोला वैद ना जानई करक कलेजे माही। महला दूजा वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू।

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए।

सखे संतै चित करे हो। नानक चूर मरह दोहागनी जिन अवरी लागा ने हो। महला दूजा सावने आया हे सखी जल हर बर सुनहार। नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी। आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए। सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए। नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

साहस्यों केव रहसी रंग रंग रहया तिन कामणी जिन मन भउ भाउ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न हुए महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यों मन भंग पौड़ी दोवें तरफा उपाई एक वरतिया वेद बाणी वरताई अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाखां दोवें विच धर्म फिरै रह वारिया मनमुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी निश्चो दरगाह हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से भगत तुद भाम दे सच्चे नाए प्यारिया।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे।

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलिया जाई आपे जोड़ विछोड़ै।

जो हर चरनी रहे लिव लाए। ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विच हो आप गवाए। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाए। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो गई।

सच्चा दर सोहन पौड़ी, सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोआ आई जे सतगुरे अगे घालिया, पोहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया, गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया, मनमुख बिन नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया, पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

जाए दूजे पाए परमिया अमृत जल पल्लै ना पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुभाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहे आसमाए पौड़ी एक वन खंड बै सह जाए साधना देवही एक पाला ककर भन शीतल जल हेवही एक भस्म चढ़ावै अंग मैल ना धोवही एक जटा बिकट बिकराल कुल घर खोवही एक नग्न फिरहै दिन रात नींद ना सोवही एक अगन जलावै अंग आप बिगोवही विण नावै तन शार क्या कह रोवही सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवही।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ गुरमुख शब्द संभालीऐ सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

है शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल आहारी।

मुख सनावै खसमै मूल ना भावै अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा अक डाली बह खाई खसमै भावै ओहो चंगा जे करे खुदाई खुदाई नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेवया तिन्नी सुख पाया।

विण प्रीति भगत ना हो वै विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुध सेवंदे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल घटै दिन काल सिज्जै काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रूवह लिया वह फेर बिन बूझे

जिन चेतना आवे महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत।

जिस भाणा मन वसाई अपने भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिखिया कदे ही रजै नाही मूरख भुख न जाई दूजे सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई सतगुर सेवे सो सुख पाई जिसनो कृपा करे रजाई सलोक महला पहला शर्म धर्म दोए नानका जे धन पल्ले पाई सो तन मित्र ना कांडी जित सिर चोटा खाई जिनकै पल्ले धन वसै।

सच पछाणिए, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, भौजल तारन हार शब्द पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया सो पंडित भी।

वार हुए फक्कड़ पिटे अंध चुप्पे चंगा नानका विण नावे मोहे गंध महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम वसार तावन तत्या।

आप खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर शावानिया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

जाचै पसमति सुऐ सारा जा त्रिपवन पति जाचै कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिपवन धनी जाचै कर निकटवर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंत।

पतत उधरिया मनुआ चल चल बहु बहु बिद मिल साधु वसगत करिया ज्यों जल तंत पसार्यो बदक ग्रस मीना वसगत खरिया हर के संत संत पल नीके मिल संत जना मल लहिया हौ मैं दुरत गया सब नीकर ज्यों साबुन कापर करिया मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर गुर सतगुर चरण उर धरिया सब दालद दुख पांच प्रभ पाया जन नानक नाम उधरिया कानड़ा महला चौथा मेरा मन संत जना पागरेन हर हर कथा सुनी मिल संगत मन कूरा हर रंग पेन रहाउ हम अचेत अचेत न जान है गत मित गुरु किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन प्रीतम कट देवो ही अरातेन हर के संत मिले हर मिलया हम की

कथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपयो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगने आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमया लुबदो पुत्र कलत्र मोह प्रीत जैसे तरवर की तो शिशाया किन

ना उतरै कब हूँ। हर हर जाय मिने हर प्रीत, हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत, हर हर नाम दियो मुख्य औखद, जन नानक।

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाव स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग सात तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहा जित ग्रह मंदर हर होत जास

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधारै गोट पराधी खिन महतारै जाको चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जाको सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवां अरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन उहां चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान पर बोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते तहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जां कहो सतगुर मया करेही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हिरदै बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवां भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर सियों।

तेरो जन हर जस सुनत उमायो रहाव मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाद समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाव ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

तनो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख जाए पुन दान अनेक क्रिया।

आदि कथिय संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइय मान रहाउ आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पनीत होहे खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथ सुन हर कीर्तन ताकी दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस कानड़ा महला पंजवा साध संगत निद हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ संतरेन नित मजन करे जन्म जन्म के किल बिखरे संत जना की ऊची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाउ ईत ऊत कहां लुभाव है एक सिंह मन लाए महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय सगल त्याग सरण आयु

आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाउ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाव तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

तू गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकि गंठ नहीं शोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

टुलेरै, दर्शन प्यास बहुत मन मेरै, मिल नानक देव जगत गुर केरै, कानला महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

पीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अतरहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनों।

कीर्त करहें तुहारी सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाकुर रहियो समाई एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवां घर अठवां।

पतत पावन भगत बचल पै हरन तारन तरन रहाउ नैन तिपते दर्श पीख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोबिंद सरन आस पूर्ण दुख बनासन।

मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवां कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद भई मिलियो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने।

ना जाए कर बसाए गुण नदान प्रगट्यो एह चोले चरण नभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहो सर्ब समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो किरपाई प्रभु दयार किरपार किरपा निद जन नानक संतरे नाई।

बिंद शासन निसभोर रहाउ लाई प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्ब सु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर कानड़ा।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावै गु, राम नाम एक तिल तिल गावै।

कनक कनक पहरे बहु कंगना कापर पांत बनावे गु नाम बिना सब फीक फिकाने जन्म मरे फिर आवे गु माया पटल पटल है पारी कर घूमन घेर कलावे गु पाप बकार मनूर सब पारी दिख दुत्तर तरियो ना जावे गु पौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावे गु राम नाम हर पेटी है हर राम नाम समावे गु अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हमै मन लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी कड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत भई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूजै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअल को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर

जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावै गु रहाउ चल तो चल चल दह दह दिस गुर राखै हर लिव लावै गु सतगुर शब्द दे हृदय अंतर मुख अमृत नाम चुआवै गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावै गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुरखिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे सरन जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी

जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाले, जप तप संयम पूरन काले, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बांध हो पाले, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखागामी, इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई।

सब फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हो मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमति तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सब हार गुर टुठे हर चेताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावनी।

आपे वरतै, सब जगत किया बनजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्यावह तुद सफल से गावह, गुरमति हर निरंकारा, सब चवह मुख हो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित भवजन पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जप है इयाणिया, हर तुम वड अगम अगाह, हर देहो प्रभु मत उत्तमा, गुर सत गुर कै पग पाह, सत संगत हर मेल प्रा

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सती।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ महार हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाय।

चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस से गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा खजिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सत गुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सत गुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम त्याया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर ते ठाकुर सेव करल एकिया सब कहो मुख हो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत वसेखिया सलोक महला चौथा राम नाम राम राव रहे राम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट वसै जग जीवना परगास कियो गुरमीत हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम त्याया गुर बचन जपियो मन कीता महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वसै बट भाग गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिव लाग पौड़ी
तन तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पाणी हर कथा सुनावहु मेरे गुर सिखहु मेरे हर प्रब अकथ कहानी क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाणी तिन विटोह नानक वारिया जो जप दे हर निर्बाणी सलोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाई नाम

नाम उपजै तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघा

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काड दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर रव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जप हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदैनो अराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम समारे। जन नानक मंगे दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण अराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार हुए, हाटे जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगीत राही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस

हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दरगह प्रभ लिखा मांगे तह छूटे नाम त्याई थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नवाई सब किल विक पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखे नाम साथी जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ।

या की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुगद इयान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

कल्याण भोपाली महला चौथा एका ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिद तरन हर चिंता मणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरण जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक आप हर कृपा करे राग कल्याण।

फल दर्श रे परस परस गुण गाइए नानक तात तात स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाउ ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंदरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै सगल जपह तरंगी।

वेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत एह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरूं रहाऊ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर सरन परू काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मधे मुक्त कहूं कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन हर

कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्ब कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हों ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यों मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लर कीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा।